रामचंद्र की जय, श्री अयोध्या राम जी लला की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री रमापति रामचंद्र की जय, श्री वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, जय जय श्री सीताराम।

भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम गर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम श्री

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। FM बालतल, FM पहलगाम, देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप, न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 पूरे जोश और उत्साह के साथ जारी है। पवित्र गुफा तक के इस सफर में जो है आपको प्रकृति की सुंदरता और बाबा भोलेनाथ के भक्तों के भीड़ के साथ चलते चलते जो है आप सभी का मन जो है प्रसन्न रहता है। आप में नई फूर्ति, नई ऊर्जा और तनाव से मुक्ति मिलती है। यात्रा के दौरान आप में सकारात्मकता आती है। ईश्वर से यही प्रार्थना, आपकी ये पवित्र यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय हो। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। FM बालतल, FM पहलगाम, देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के माध्यम से, आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स के अलावा आप हमें आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा YouTube की आराधना चैनल पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोता, आपको बताते चले, आज प्रातः जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 28वां जत्था जो है घाटी की ओर रवाना किया गया। 74 छोटे बड़े वाहनों में 1801 तीर्थ यात्री जो है वादी की ओर रवाना किए गए, जिनमें 1374 पुरुष, 351 महिलाएं, 79 साधु, 14 साध्वी शामिल है। कुल मिलाकर 1801 तीर्थ यात्री इस वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर रवाना दवा है। महकमे मौसम

मिली। ताज़ा सूचना के अनुसार जो है आज मौसम खुशगवार रहने की संभावना है। ताहम पवित्र गुफा के नज़दीक जो है ऊपरी क्षेत्र में कभी भी वर्षा होती है। मौसमी सूरत हाल कब बदलती है इस बात का अंदिया नहीं मिलता है। आप सभी तीर्थ यात्रियों से यही निवेदन कि आप जो है अपने साथ गर्म मलबूसात, अम्ब्रेला, विंड चीटर्स, वाटरप्रूफ बैग्स और बाकी अन्य चीज़ें जो है अपने साथ ज़रूर रखें, ताकि गुफा के नज़दीक जो है बालतल के मार्ग से जब आप पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे तो ऊपरी क्षेत्र में जो है आपको इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होता है। और कोशिश करें कि जो भी प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते रहे, ताकि आपकी ये जो यात्रा है सुरक्षित रहे, सफल रहे। और हमारी भी यही मुसलसल कोशिश है कि आपकी इस यात्रा में जो है हम शरीक हो पाए, हम क्षण क्षण की सूचनाएँ आप तक पहुंचाते रहे। आपकी इस पूरी यात्रा को जो है यादगार बनाने की हमारी भी मुसलसल यही कोशिश है। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग। आपको याद दिलाते चले, कल दिन में जो है दिन भर जो है 2855 तीर्थ यात्रियों ने बालतल के मार्ग से पवित्र गुफा पहुँच कर शिव जी के दर्शन प्राप्त किए थे, जिनमें 1820 पुरुष, 828 महिलाएं, 37 बालक, 38 साधु, 11 साध्वी, 2 ट्रांसजेंडर, 119 सुरक्षाकर्मी शामिल थे। कुल मिलाकर 2855 तीर्थ यात्रियों ने जो है कल बालतल के मार्ग से पवित्र गुफा पहुँच कर जो है शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। और आज जो है सुबह तड़के जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से जो सभी तीर्थ यात्री जो है इस वक्त घाटी की ओर रवाना दवा है। कुछ ही घंटों में जो है ये काफिला काजीगुंड लांबर ग्राउंड पहुंच जाता है, जहां से इन सभी तीर्थ यात्रियों को जो है ट्रांजिट कैंप पांथा चौक लाया जाएगा। पांथा चौक से होते हुए गांदरबल बालटल के रोड से जो है इन्हें पवित्र गुफा पहुँच कर शिव जी के दर्शन प्राप्त कराए जाएंगे। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल, FM पहलगाम। देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के माध्यम से आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स तथा आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी हम उपलब्ध है। श्रोतो, श्री अमरनाथ जी यात्रा पूरे जोश और उत्साह के साथ जारी है। आज तड़के जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 28वां जत्था घाटी की ओर रवाना किया गया। 74 छोटे बड़े वाहनों में कुल मिलाकर 1801 तीर्थ यात्री इस वक्त घाटी की ओर रवा दवा है। श्रोताओ, धार्मिक मान्यता के अनुसार से जो है इसी पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने का रहस्य यानी अमर कथा सुनाई थी। यही वजह है इस स्थान को जो है

अमरनाथ कहा गया। इस कथा के अनुसार भगवान शिव ने इस रहस्य को जो है किसी और तक न पहुंचने देने के लिए अपने साथी जुड़े हर प्रतीक को रास्ते में छोड़ दिया था। नंदी को पहलगाम में, चंद्रमा को चंदनवारी में, सांपू को शेषनाग के पास और गणेश जी को महागुणस पर्वत के निकट छोड़ दिया। अंत में वे माता पार्वती के साथ इस गुफा में पहुँचे और अमर कथा का उपदेश दिया। श्रोताओं, ये कथा हमें बताती है कि आध्यात्मिक ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब मन मोह, अहंकार और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो। अमरनाथ यात्रा इसी त्याग, तपस्या और भक्ति का प्रतीक है। श्री अमरनाथ यात्रा का हर कदम एक आध्यात्मिक सीख देता है। कठिन चढ़ाई, बदलता मौसम और लंबी पैदल यात्रा शिव भक्तों को धैर्य और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना सिखाती है। जब श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के साथ आगे बढ़ते हैं तो यकीनन जो है आपका मन प्रसन्न रहता है, आप में नई ऊर्जा और दिव्य शक्ति का संचार होता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा एक पवित्र यात्रा है और इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए आकाशवाणी क्षण क्षण आपके साथ है। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल, FM पहलगाम। देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के माध्यम से आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स तथा आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओ, इस वक्त हमारे साथ जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से हमारे संवाददाता जावेद मेहराब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट्स हैं आज की यात्रा के हवाले से, आइए सुनते हैं। जावेद, स्वागत करते हैं आपका इस विशेष प्रसारण में।
1: जी, बहुत शुक्रिया। सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से भी हार्दिक स्वागत है और हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी तरफ से जो हमारे पास जानकारी आती है उसको तीर्थयात्रियों के साथ और अपने श्रोताओं के साथ हम उसको साझा करें। तो आज जम्मू में मौसम एकदम साफ है। इस दौरान यहाँ संभाग में पूरी तरह से मौसम स्थिर भी है और दूसरी जगह पर कोई बारिश की कोई खबर नहीं है। और यहाँ तीर्थयात्रियों का जत्था आज एक दिन स्थगित रहने के बाद यहाँ भगवती नगर से रवाना हो गया, जो सुखरोश और हर्षोल्लास के साथ श्रद्धालुओं का बाबा बर्फान के दर्शन के लिए जो जा रहे थे वो बहुत उत्साहित नजर आ रहे थे। और एक दिन स्थगित होने के बाद श्रद्धालु उसी उत्साह के साथ यहाँ से रवाना कर दिए गए। ये जो पिछले एक दिन से जो ये यात्रा स्थगित रही, उसमें भूस्खलन की वजह से उधमपुर और रियासी में जो रात को बारिशें हो रही थी, जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग की जो हालत थी वो चलने के काबिल नहीं थी, उसकी वजह से प्रशासन ने ये फैसला लिया था कि एक दिन स्थगित रहने के बाद आज श्रद्धालुओं को यहाँ से रवाना कर दिया गया। और राष्ट्रीय राजमार्ग बिल्कुल चलने के काबिल है। तमाम कर्मचारी और राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो मशीनें लगी हुई हैं, जल्द से जल्द हमने देखा कि इस पूरे वक्त में जब से श्रद्धालुओं का घाटी की ओर रवाना होना शुरू हुआ है, तब से लगातार युद्ध स्तर पर कर्मचारी और मशीनरी जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगी है। कई बार ऐसे मौके आए, यात्रा को स्थगित भी करना पड़ा, यात्रा को में बाधाएं आई, लेकिन हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए उन कर्मचारियों को जो याद पूरी 24 घंटे इस श्रद्धालुओं के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम कर रहे हैं। और इस दौरान यहाँ आज श्रद्धालुओं का जत्था जो रवाना हुआ उसकी कुल संख्या 1801 रही। वहीं रवाना होने वाले जत्थे में शामिल पुरुषों की संख्या 1347 है, महिलाएं 351 है, साधु 99 है और साध्वी 14 है। श्रद्धालु 74 वाहनों में घाटी की ओर अग्रसर हैं और उम्मीद है कि क्योंकि ये जो श्रद्धालुओं का जत्था है ये सुबह तड़के लगभग 2:30 बजे और 3 बजे के बीच में इस श्रद्धालुओं के जत्थे को यहाँ से रवाना कर दिया गया, ताकि पूर्ण वक्त पर, अच्छे वक्त पर वो घाटी तक पहुंच जाए और किसी भी तरह की कोई बाधा ना हो, क्योंकि इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी ट्रैफिक को चलने की इजाजत नहीं होती। जब यहाँ से श्रद्धालुओं का ये जत्था हमेशा से रवाना होता है, इसी क्रम के मुताबिक सुबह तड़के ये फैसला लिया गया था कि सुबह तड़के इनको यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा, ताकि वो बेहतर धूप में और अच्छे माहौल में घाटी तक पहुंच जाए और वहां से बालताल के रास्ते वो बाबा बर्फानी के दर्शन की तैयारियों में लग जाएंगे। तो जो श्रद्धालुओं का जत्था है वो उसी जोश खरोश के साथ यहां से रवाना हो गया और निवास स्थान जो भगवती नगर है उसमें उसके जो पिछले एक दिन से जो स्थगित यात्रा रही वहां श्रद्धालुओं का जो हालांकि ये जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बहुत कम हुई है अब, लेकिन

0: दिनों के इस स्थगित रहने के बाद एक दिन का जो बाधा रही उसमें जाने की, उसके बाद श्रद्धालुओं की ये संख्या लगभग 1800 तक पहुंच गई। तो बहुत अच्छा माहौल में, बहुत अच्छे वातावरण में उसी उत्साह के साथ श्रद्धालु यहाँ जमे हुए हैं और लगातार यहाँ पहुंच भी रहे हैं और लगातार यहाँ से तमाम तरह की प्रक्रियाएं पूरी कर श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के उत्साह में यहाँ से रवाना भी हो रहे हैं। तो तमाम तरह का जो प्रबंधन है इस पहले बेस कैंप पर, इस पहले निवास स्थान पर, उसे उसी क्रम में रखा गया है। उसके प्रोटोकॉल में किसी तरह की कोई कमी नहीं की गई है ताकि श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं उन्हें बराबर अपने वक्त के मुताबिक यहाँ से रवाना भी किया जाए और यहाँ पर जो प्रबंधन है उसमें किसी तरह की उनको कमी ना हो। जो क्रम पहले दिन से चल रहा था वो क्रम आज भी बराबर जारी है और यहाँ से लगातार जो रवानगी है उसे आसान बनाने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं और जिस तरह से बाकी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, लंगर कमेटियां हैं, वो सब यहाँ पर जमे हुए हैं और लगातार तीर्थयात्रियों की सेवा में पूरी तरह से अपना योगदान दे रहे हैं और जो तीर्थयात्री दर्शन कर वापस लौट रहे हैं उनका भी यहाँ स्वागत होता है और यहाँ से वो सीधे रेलवे स्टेशन या सड़क के माध्यम से जिस तरह से देश के अन्य भागों की तरफ उन्हें अपने घरों को लौटना होता है तो पूरी तरह से वो इंतजाम जो है वो रखा गया है। यहाँ प्यार मोहब्बत और मेहमान नवाजी के साथ उन्हें यहाँ से रवाना कर दिया जाता है और उसका रश हम रेलवे स्टेशन पर भी देख सकते हैं। आज भी हेल्प डेस्क बिल्कुल रखे गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इस दौरान जम्मू के जो धर्मस्थल हैं या जम्मू के जो तारीखी धर्म स्थान है जिसमें माता वैष्णो देवी है और यहाँ के प्राचीन मंदिर हैं, उनकी जिन्हें टाइम होता है, जिन्हें वक्त होता है, वो यहाँ माता वैष्णो देवी की भी यात्रा करते हैं और उसके साथ साथ यहाँ के जो प्राचीन मंदिर हैं उन तक भी पहुँचते हैं। तो एक ये जो सावन का महीना है उसमें पूजा अर्चनाओं का और धर्म स्थलों तक पहुँचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। उसमें निवासी जो है, स्थानीय निवासी जो है, वो भी सुबह आप मंदिरों में अगर देखेंगे तो यहाँ रश बना होता है और सभी जो श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चनाओं में भी व्यस्त होते हैं और उसमें श्रद्धालु भी भरपूर हिस्सा लेते हैं और जो वातावरण बना हुआ है वो बहुत बेहतर बना हुआ है। एक दिन स्थगित रहने के बाद ये यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। हमें उम्मीद है कि आगे भी ये यात्रा इसी तरह से अपने पूर्ण वक्त पर, क्योंकि अभी ये आखिरी पड़ाव में है यात्रा, संख्या का कम होना लाजिम है लेकिन इसके जोश और खरोश में किसी तरह की कोई कमी नहीं है और श्रद्धालु जितने भी हैं उन्हें उसी मोहब्बत, प्यार और मेहमान नवाजी के साथ उनका स्वागत भी होता है। उनके लिए जो प्रबंधन है उन्हें उस प्रबंधन के की सहायता भी मिलती है, बाजाबता उन्हें उसी तरह से ट्रेनिंग भी दी जाती है, जाने की जो एडवाइजरी है उसी तरह से मिलती है और श्रद्धालुओं को उसी क्रम के साथ यहाँ से रवाना भी किया जाता है। तो ये क्रम जो है जो प्रशासन की तरफ से बनाया गया है उसमें किसी तरह की कमी नहीं है। उसी तरह से जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी किसी और वाहन को जाने की इजाजत नहीं होती है जब तक कि श्रद्धालु पूरी उस सुरक्षा के साथ, पूरी अच्छे वातावरण में पूरी तरह से गाड़ी न पहुंच जाए, उसके बाद ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर अन्य वाहनों को चलने की इजाजत होती है। तो ये एक डिसिप्लिन है जिसको बनाया गया है और जिसमें जम्मू कश्मीर की सरकार, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की मैनेजमेंट, सुरक्षा एजेंसियों की एडवाइजरीज पर पूरी तरह से अमल भी किया जाता है और उसको उसका पालन भी होता है और उसमें श्रद्धालु भी शामिल है और सभी संस्थान जो इस तीर्थ यात्रा से जुड़े हैं वो सभी उसका पूरी तरह से पालन भी करते हैं। जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद जावेद, विस्तार में जानकारी साझा करने के लिए
0: बहुत शुक्रिया।
1: श्रोताओं, ये थे जावेद मेहराब जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से अपडेट दे रहे थे। खुशगवार मौसम में आज यात्रा का 28वां जत्था घाटी की ओर रवाना किया गया और जाहिर सी बात है

संख्या जो है यात्रियों की कम हो चुकी है, लेकिन पूरे जोश और उत्साह के साथ मुसलसल प्रशासन इस कोशिश में लगा हुआ है कि सभी तीर्थ यात्रियों की आसानी के लिए जो है इकदाम उठाए जाए ताकि ये यात्रा जो है उनकी सफल और सुखद रहे। आपको याद दिलाते चले, 4.5 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने जो है अभी तक शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। कल दिन की अगर बात करें तो 2000 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने कल पवित्र गुफा पहुंचकर बादल के रास्ते से जो है यात्रा की और शिव जी के दर्शन प्राप्त किए। आकाशवाणी शनशन की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेगा, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। FM बालतल, FM पहलगाम, देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के माध्यम से आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। श्रोताओ, इस वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के अपडेट्स लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन जुड़ चुके हैं।

0: फोन लाइन पर क्या कुछ अपडेट्स है आज की यात्रा के दिन के हवाले से, आइए सुनते हैं। तस्किन, स्वागत करते हैं आपका इस विशेष प्रसारण में।
1: जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। श्री अमरनाथ यात्रा का आज 28वां बेज जो है, एक दिन के हाल्ट के बाद दोबारा जो है यात्रा शुरू की गई है। और जम्मू से जो भगवती नगर के बेस कैंप से जो ट्रैफिक निकला है आज हलाल सुबह, तो वो अभी रामबन डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुका है। बालतल के रास्ते 1801 यात्री जा रहे हैं 74 गाड़ियों में, और कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो भगवती नगर से अब तक 1,43,513 यात्री कश्मीर की तरफ रवाना किए गए हैं, बालतल और पहलगाम के रास्ते पवित्र गुफा की तरफ। और अगर कुल मिलाकर देखें तो दर्शन जो सरकारी आंकड़े हैं उनके मुताबिक 4.5 लाख के करीब लोग अब तक दर्शन कर चुके हैं श्री अमरनाथ गुफा का, तो ये सिलसिला अभी जारी है। इस दौरान जो कश्मीर से बालतल से वापस जो यात्रा आ रही है उसे भी रवाना किया गया है, और अभी वो कश्मीर के गांधरबल वगैरह से निकलकर यहाँ बनिहाल के लांबर ग्राउंड की तरफ बढ़ रही है, जहां पर इन्हें रोका जाएगा और वहां पर इनको लंच वगैरह या जिस वक्त भी पहुंचेंगे ब्रेकफास्ट का जो भी सभी इंतजाम वहां है वहां पर इनको कुछ वक्त के लिए हाल्ट किया जाए, उसके बाद इन्हें जम्मू की तरफ रवाना किया जाएगा। जम्मू से नगर शाहिरा कई दिनों से अब ठीक है, पिछले 2-3 दिन से कहेंगे कि इसमें जो पीछे बारिशों की वजह से स्लाइडिंग हुई थी उस वजह से बहुत जगहों पर हाईवे को नुकसान पहुंचा था, लेकिन वह अब ठीक कर दिया गया है और मजमू तौर पर जो ट्रैफिक की नकलो हरकत है वो बगैर किसी खलल के जारी है। इस दौरान जो रामबन बनिहाल क्षेत्र है इसमें बादल है, आज सुबह से ही खुशगवार मौसम है और बादलों ने भी पूरा जमावड़ा बना रखा है। फिलहाल बारिशों का कोई इम्कान दिख नहीं रहा, लेकिन बादल कुछ क्षेत्र में बहुत गहरे हैं और कुछ में हल्के हल्के हैं, और फिलहाल यात्रा जो है चल रही है। और इस दौरान जो जम्मू से 7 बजे से ट्रैफिक को रिलीज किया गया है, जो मुसाफिर ट्रैफिक हमारा होता है जो LMVs वगैरह होती है, तो उन्हें 7 बजे से नगरोटा से कश्मीर की तरफ आने की इजाजत दी गई है, और ये भी ट्रैफिक अभी कश्मीर की तरफ रवाना हुआ है। इसके बाद 11:30 बजे से जो रूटीन रखा गया है, शेड्यूल रखा गया है, उसे काजीगुंड के टनल से जम्मू की तरफ रवाना किया जाएगा, लेकिन जब यात्रा की गाड़ियां कम होती हैं या इसमें थोड़ा सा अच्छा टाइम मिलता है इनको कश्मीर से रेगुलेट करने का ट्रैफिक को, तो उसमें कभी कभार पहले ही ट्रैफिक को रिस्टोर किया जाता है, तो उम्मीद है 11 बजे तक वो जम्मू कश्मीर से भी ट्रैफिक को जम्मू की तरफ चलने की इजाजत दी जाएगी। जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद तस्किन, विस्तार में जानकारी साझा करने के लिए
1: जी शुक्रिया।
0: तो ये थे मोहम्मद तस्किन, राष्ट्रीय राजमार्ग के अपडेट्स दे रहे थे कि इस तरह से जो है आज राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी जो है मौसम खुशगवार ही है, और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं मौसम के विभाग से मिली हमें सूचना के अनुसार जो है आज राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू और बालतल के रास्ते पर जो है मौसम खुशगवार ही रहेगा। किसी भी मौसमी सूरत हाल को लेकर जो है आज कोई बड़ा अपडेट नहीं है, कोई बड़ी चेंज नहीं है, आज मौसम खुशगवार ही रहेगा। ताहम ऊपरी क्षेत्र में जो है हल्की वर्षा होने की भी संभावना जताई गई है, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में कब वर्षा होगी इस बात का जो है अंदिया नहीं रहता है। सभी तीर्थयात्रियों से यही निवेदन कि आप जो है ज़रूरी चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखें, वाटरप्रूफ बैग्स, अम्ब्रेला, विंडशीटर्स और गर्म मलबूसात जो है वो आप अपने साथ ज़रूर रखें, और कोशिश करें कि जो भी प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश आपको दिए जाते हैं उनका आप पालन करते रहें, ताकि आपकी ये जो पूरी यात्रा है वो सुरक्षित रहे और सफल तरीके से संपूर्ण हो। और मुसलसल हमारी भी यही कोशिश है कि आपकी इस पवित्र यात्रा को जो है जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक जो है यादगार बनाया जाए, और ये खूबसूरत लम्हात, ये खूबसूरत यादें जो है आप अपने साथ ले जाए। और हमारी ये मुसलसल कोशिश है कि जो भी अपडेट्स हमारे पास आते हैं वो हम आप तक पहुंचाएं, ताकि आप बाखबर रहे और आपकी जो यात्रा है इसमें कोई दुविधा का सामना आपको ना करना पड़े। आकाशवाणी क्षण आपके साथ है, क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सद्मिद्वृधे।

0: सुबह के 8 बज चुके हैं। अय्यब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनते हैं।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है जिसका उपयोग देश को वैश्विक स्तर पर सामग्री सृजन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।
3: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
2: नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉ टीवी सोमनाथन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी। डॉ सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था। समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
4: इंडिया इज प्राउड टू बी वन ऑफ अफ्रीका।
5: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का रहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा निर्धारित है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। ये विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के लिए किया जा रहा है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक

0: न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई थी जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉक्टर वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रूपये की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। राज्य में विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। पिछले चार दिनों से भूख हड़ताल कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नेता देवेंद्र नाथ महतो के साथ 5 प्रदर्शनकारी शामिल हो गए हैं। इनमें 2 महिलाएं भी हैं। ब्लड शुगर और रक्तचाप कम हो जाने के कारण श्री महतो के स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर राजधानी रांची में 25 जुलाई से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी विद्यार्थी 14वें झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद हुर्मुज जलडमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकाल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3,972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए दुनिया का एक प्रमुख जलमार्ग है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजेता हेरात और विदेश सचिव अरुणी रणराजा से मुलाकात की। ईरान ने कहा है कि हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। एक रिपोर्ट।
1: इस संभावित समझौते से हुर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। ईरान ने कहा कि वह हुर्मुज जलडमरू मध्य पर एक हद तक नियंत्रण चाहता है और इस मार्ग से आवाजाही वैसी नहीं रहेगी जैसी युद्ध से पहले थी। ईरान हुर्मुज जलडमरू मध्य के उत्तरी हिस्से को जबकि ओमान दक्षिणी हिस्से को नियंत्रण करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ईरान युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण चाहता है। ईरान ने आगाह किया कि अमेरिका के किसी और हमले की स्थिति में वह खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: जापान के हिरोशिमा में आज परमाणु बम गिराए जाने की बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 140,000 लोग मारे गए थे। आज सुबह घटनास्थल पर पीस मेमोरियल पार्क में मौन रखा गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने परमाणु हथियारों को खत्म किए जाने की अपील की। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने SDRF, NDRF, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने को कहा है। उत्तराखंड आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया।

0: क्या है?
1: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। तीन जनपद जहां पे ऑरेंज अलर्ट है वहां पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को अलर्ट करते हैं।
0: राज्य में मौसम के बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारे संवाददाता।
2: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभावित आपदा की किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य की सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों और नदी नालों की निगरानी रखने पर भी जोर दिया है। उन्होंने आपातकालीन परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रखने और प्रत्येक घटने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में जनहानि को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: मौसम विभाग ने आज झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज दोपहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रीय हित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। खेलों में जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में उड़ीसा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज सेमीफाइनल में उड़ीसा का मुकाबला पंजाब से जबकि झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: संसद में जारी गतिरोध समाप्त करने के प्रयास के तहत संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, संसद गतिरोध, राहुल गांधी से मिले रिजिजू, परिसीमन और FCRA पर राहत तलाशने की कोशिश। जकरबर्ग ने भारत से मांगी माफी, फेसबुक से PM मोदी की पोस्ट हटाने पर आखिर झुके मेटा प्रमुख, अमर उजाला सहित कई अखबारों की सुर्खी है। पत्र लिखता है, मेटा ने माना, खास तरह का कंटेंट बढ़ाने के लिए मिली थी मोटी रकम। दैनिक जागरण ने अपने आर्थिक पन्ने पर RBI गवर्नर के शब्द प्रकाशित किए हैं, लगातार चौथी बार रेपो रेट 5.25% पर स्थिर। गवर्नर ने कहा, पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी रहा तो ईंधन और खाने पीने की चीजें हो सकती है महंगी। नीट होगी फुल प्रूफ, JEE तर्ज पर परीक्षा की तैयारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर युवाओं के नशे में गिरफ्त होने का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, ताकि नशे की गिरफ्त में ना आए युवा। पत्र लिखता है, भारत में करीब 75% युवा 21 साल की उम्र तक किसी न किसी नशे का शिकार हो चुके हैं। परिवार और शिक्षक संजीदगी से संवाद करें तो उन्हें नशे से बचाया जा सकता है। ईरान और ओमान होर्मूज खोलने पर हुए सहमत, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, ईरान को होर्मूज पर मिल सकता है कंट्रोल। दैनिक भास्कर ने कोटा में नोनेरा एब्रा डैम के बंद होने के बाद काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ छाई हरियाली का चित्र प्रकाशित किया है, जिसमें पानी के ठहराव से नदी किनारे बसी कराइयों और हरी भरी वादियों का सौंदर्य चरम पर है।
0: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नीतिका त्यागी, पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के पास तख्लीकी सलाहियत का गैर मामूली जखीरा मौजूद है, जिसे कंटेंट की तख्लीक के एक मरकज के तौर पर मुल्क की पोजीशन को मुस्तहकम बनाने के लिए बरूए कार लाया जा सकता है। सरकार ने काबीना सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन और मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन के ओहदे की मुद्दत में एक साल की तौसी कर दी है। झारखंड में भर्ती के इम्तिहानात में बेजाबतगियों के मामले पर तलबा ने अपना एहतजाज तेज कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने रियासत में मूसलाधार बारिश की पेशगोई के तनाजुर में मुतालिका एजेंसियों से सख्त चौकसी बरतने को कहा है। भारत ने श्रीलंका पर जोर दिया है कि वो भारतीय माहीगीरों और उनकी कश्तियों को जल्द छोड़ने के लिए तआवुन करे, जिन्हें उसके हुक्काम ने पकड़ रखा है। और भारत ने खलीज के बहरान के दौरान आबनाए हुरमुस से 60 बहरी जहाजों को बाहिफाजत बाहर निकाला है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की किस्सा गोई की मालामाल रिवायत रही है और मुल्क में तख्लीकी सलाहियतों वाले अफराद की बड़ी तादाद है, जिसका इस्तेमाल मवाद की तख्लीक के शोबे में मुल्क की पोजीशन एक आलमी मरकज के तौर पर मजबूत करने में किया जा सकता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के शरीक CEO टेड सेरेंटोस से मुलाकात की। वजीर आजम ने यह भी बताया कि मस्कुरा मीटिंग के दौरान उन्होंने भारत के मीडिया और तफरीही शोबे की जबरदस्त सलाहियत पर तबादला ख्याल किया। गुज़श्ता साल नई दिल्ली में कंटेंट क्रिएटर्स की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने उनसे कहा था कि वो भारत के किस्से और कहानियों को दुनिया के साथ साझा करें।
1: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे, और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
0: इस दौरान नेटफ्लिक्स इंडिया ने कहा कि मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने भारत की मीडिया और तफरीही सनत को आलमी सतह पर पहुंचाने के मुश्तरका विजन पर तबादला ख्याल किया। नेटफ्लिक्स इंडिया ने किस्सा गोई से मुतालिक पहल के आगाज का भी ऐलान किया। इस पहल में सरमायाकारी का मकसद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज IICT और नेशनल फिल्म डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन NFDC के साथ शराकतदारी और सलाहियत साजी के जरिए भारत की तख्लीकी सलाहियत वाले अफराद की अगली नस्ल को फरोग देना है। सरकार ने काबीना सेक्रेटरी डॉक्टर TV सोमनाथन के ओहदे की मुद्दत में एक साल की तौसी कर दी है। तकर्रुरी से मुतालिक काबीना कमेटी ने इसकी मंजूरी दी है। इस तरह वो इस महीने की 30 तारीख से मजीद एक साल तक काबीना सेक्रेटरी के फराइज अंजाम देंगे। काबीना कमेटी ने दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन के ओहदे की मुद्दत में भी एक साल की तौसी की मंजूरी दी है। लोकसभा में ऐवान के आज के कामकाज में टैक्सेशन और दीगर कवानीन में तरमीम से मुतालिक बिल 2026 गौर व खौस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मजकूरा बिल का मकसद अदायगियों और तस्वीये के 2007 के एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 2025 और फाइनेंस एक्ट 2026 में तरमीम करना है। उधर राज्यसभा में अखराजात से मुतालिक बिल नंबर 3 गौर व खौस और मंजूरी के लिए पेश किया जाना है। लोकसभा इसे पहले ही मंजूर कर चुकी है। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के मामले पर तलबा ने अपना एहतजाज तेज कर दिया है। झारखंड असेंबली के आज से शुरू होने वाले मानसून इजलास से कबल दो खवातीन समेत एहतजाज करने वाले 5 अफराद झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चे के लीडर देवेंद्र नाथ महतो के साथ शामिल हो गए हैं, जो पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। महतो की ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर काफी कम होने के तनाजुर में उनकी सेहत तशवीश का मामला बन गई है। रियासत के वजीर आला हेमंत सोरेन ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार तलबा के मसाइल हल करने की पाबंद है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पूरी संजीदगी के साथ इस मामले पर काम कर रही है। जनाब सोरेन ने यह भी कहा कि मुतालिका एजेंसियां दिन रात तफ्तीश का काम कर रही हैं और कसूरवार अफराद को जेलों में भेजा जा रहा है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC इस्लाहात मंच के परचम तले एहतजाज 25 जुलाई को शुरू हुआ था। मुजाहिरीन का कहना है कि बार बार की

0: अपीलों के बावजूद किसी तरह की ठोस कार्रवाई करने में सरकार के नाकाम रहने के बाद उन्हें एजिटेशन करने का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। ये मुजाहिरीन 14वें झारखंड पीएससी सिविल सर्विसेज इम्तिहान मनसूख किए जाने और भर्ती के इम्तिहान में मुबैना बेजाबतगियों की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश होने का सिलसिला जारी है। देहरादून, चमोली और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वार्निंग के मद्देनज़र देहरादून और कुछ दीगर जिलों में 12वीं क्लास तक के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी मराकज में आज छुट्टी का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली इंतजामिया और बाज़ाबादकारी महकमे की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सभी मुतालिका महकमों को हिदायत दी कि वो लगातार बारिश होने और रियासत के बाज़ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के इम्कान के मद्देनज़र सख्त चौकसी बरतें। उन्होंने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला इंतजामिया और दीगर एजेंसियों से कहा है कि वो करीबी तालमेल कायम रखें और किसी भी तरह की हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर राहत और बचाव कार्रवाई को यकीनी बनाएं। वहां के बाशिंदों और सयाहों को ये सलाह दी गई है कि वो गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें और किसी भी तरह के सफर पर बाहर निकलने से पहले मौसम और सड़क रास्तों के बारे में ताज़ा जानकारी हासिल करें। हमने रियासत में हाई अलर्ट जारी किए जाने के बारे में कुदरती आफात से पैदा सूरत हाल से निमटने और बाज़ाबादकारी महकमे के सेक्रेटरी विनोद कुमार सुमन से बात की।
1: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। तीन जनपद जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट है वहाँ पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को अलर्ट करते हैं।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। दिल्ली के बाज़ हिस्सों में भी आज सुबह बारिश हुई। मौसमियात महकमे के मुताबिक कौमी राजधानी में आज दिन में भी कुछ मकामात पर औसत बारिश होने का इम्कान है। भारत ने श्रीलंका पर जोर दिया है कि वो भारतीय माहीगीरों और उनकी कश्तियों को जल्द छोड़ने में तावुन करे जिन्हें उसके हुक्काम ने पकड़ रखा है। साथ ही भारत ने ये बात दोहराई है कि तवील अरसे से चले आ रहे इस मामले से निमटने के लिए इंसानी हमदर्दी का रवैया इख्तियार किया जाना चाहिए। श्रीलंका के रहनुमाओं के साथ खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के तबादले ख्याल के दौरान ये मामला खासतौर पर जेर गौर आया। जनाब मिस्री एक दिन के दौरे पर कल कोलंबो पहुंचे थे। उन्होंने श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके, वजीर आजम हरिनी अमरसूरिया, वजीर खारिजा और खारिजा सेक्रेटरी के साथ अलग अलग मुलाकात की। माहीगीरों का मामला भारत और श्रीलंका के दरमियान ताल्लुकात में एक अहम मामला रहा है। सरकार ने कहा है कि मगरबी एशिया के खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल कशीदा होने के बावजूद आबनाए हुरमुस से 60 माल बरदार बहरी जहाजों को बाहिफाजत बाहर निकाला गया। पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खलीज के खित्ते से 3972 भारतीय मल्लाहों को वापस लाया गया। साथ ही बहरान से निमटने से मुतालिक दिन रात काम करने वाले निज़ाम के जरिए लोगों के मुश्किल में घिरे हुए हालात के ताल्लुक से फोन कॉल्स और ईमेल्स पर कार्रवाई की गई। ईरान ने कहा है कि आबनाए हुरमुस के मामले पर ओमान के साथ समझौता तय करने का काम हतमी मरहले में है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस हफ्ते समझौते का ऐलान किया जा सकता है। ऐसा होने पर अहमियत की हामिल आबी गुजरगाह फिर से खुल जाएगी, आलमी मईशत पर दबाव कम हो जाएगा और जंग के खात्मे में मदद मिलेगी, लेकिन ईरान की बंदरगाहों पर अमरीका की नाकाबंदी हटाने के ताल्लुक से इसमें खैर यकीनी की कैफियत का इम्कान है। ट्रंप इंतजामिया ने इससे कबल ऐसे किसी भी मुआहिदे के इम्कान को रद्द कर दिया था जिससे आबनाए हुरमुस पर ईरान की गिरफ्त मजबूत हो सकती हो, जो अमरीका के लिए एक बड़े नुकसान के मुतरादिफ होगा और आलमी जाब्तों से भी इन्हिराफ होगा। ईरान ने आबनाए हुरमुस के मामले पर कंट्रोल के कुछ इकदाम पर यह कहते हुए इसरार किया है कि वो एक खुली बैन अवी आबी गुजरगाह के ताल्लुक से पीछे नहीं हटेगा जैसा कि ये जंग से पहले थी। अमेरिकी कांग्रेस के इंतखाबात से कबल जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रंप पर दबाव बढ़ता जा रहा है। उधर ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ओमान के साथ समझौता तय करने का काम आखिरी मरहले में है, और बज़ाहिर अमरीका की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि

ऑन एआईआर आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स तथा आकाशवाणी की यूट्यूब चैनल आराधना पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 पूरे जोश और उत्साह के साथ जारी है। आज तड़के जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रा का 28वां जत्था जो है घाटी की ओर रवाना किया गया। कुल मिलाकर 1000 से अधिक तीर्थ यात्री 74 छोटे बड़े वाहनों में इस वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर खुशगवार मौसम में घाटी की ओर रवा दवा है। 1801 तीर्थ यात्रियों में पुरुषों की संख्या 1347 है, इसके अलावा 371 महिलाएं, 89 साधु, 14 साध्वी शामिल है। कुल मिलाकर 1801 तीर्थ यात्री आज तड़के जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से घाटी की ओर रवाना किए गए। वहीं कल रुके पड़े तीर्थ यात्रियों को जो है सुबह तड़के बालटल के मार्ग से दुमेल एक्सेस कंट्रोल गेट को जो है पार करने की इजाज़त दी गई। सभी तीर्थ यात्री इस वक्त पवित्र गुफा की ओर रवाना दवा है। कल की अगर बात करें तो कल जो है 2000 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने शिव जी के दर्शन प्राप्त किए थे और आज जो है हमें मिली ताज़ा सूचना के अनुसार 72 तीर्थ यात्रियों ने अभी तक जो है पवित्र गुफा पहुंचकर शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना कि सभी तीर्थ यात्रियों की यात्रा जो है सफल, सुखद और मंगलमय हो, यही हमारी मनोकामना है। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेगा। बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM पहलगाम, FM बाल्त, देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के माध्यम से आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। श्रोतो, श्री अमरनाथ जी यात्रा पूरे जोश और उत्साह के साथ जारी है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि आज जो है यात्रा का 28वां जत्था सुबह तड़के जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से घाटी की ओर रवाना किया गया। 1800 से अधिक तीर्थयात्री जो है इस वक्त घाटी की ओर आरंभ हो रहे हैं। आपको बताते चले, इस वक्त हमारे साथ बालटल के मार्ग से गांदरबल से हमारे संवाददाता रहीम रिजवान यात्रा के हवाले से अपडेट्स लेकर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट्स है आज के दिन के हवाले से रिजवान के पास, आइए सुनते हैं। रिजवान, स्वागत करते हैं आपका इस विशेष प्रसारण में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी
0: जी।
1: ये अगर हम बालतल मुखी मार्ग से मार्ग की बात करेंगे तो बालतल मुखी मार्ग से जो तीर्थ यात्रा है वो सुचारू रूप से जारी है। धार्मिक रूप से श्रद्धालु जो है वो पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इस हवाले से यहाँ का वातावरण जो है, सबसे पहले हम श्रोताओं को इसके यहाँ के वातावरण और यहाँ की मौसम की स्थिति कैसी है उसके बारे में जानकारी देते हैं, और उसके साथ साथ यात्रा के हवाले से क्या गतिविधि हो रही है उस बारे में भी हम उन्हें अहम जो महत्वपूर्ण सूचना है उसे साझा करते हैं। तो यात्रा के हवाले से हमारे पर जो अपडेट है, आज यहाँ बादल पे जो आकाश पे बादल छाए हुए सुबह सवेरे ऐसा लगता कि वर्षा होने की संभावना बनी हुई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे धूप निकले और इसके साथ साथ यहाँ ठंडी हवाएं भी चलने लगी, तो ऐसा मौसम देखने को यहाँ मिल रहा है। बिल्कुल खुशगवार मौसम है, और जो गुज़श्ता दिनों के दौरान जो भारी वर्षा हुई है उससे यहाँ सरसब्ज मैदान अब नजर आ रहे हैं चारों ओर, तो एक नई सुंदरता देखने को मिल रही है। इन हवाओं का आनंद लेते हुए आज सुबह सवेरे बालतल बेस कैंप से सुबह चार बजे से 7 बजे तक 642 श्रद्धालु जो है वो पवित्र गुफा के और रवाना हुए। हर हर महादेव बम बम बोले का पवित्र नाद करते हुए इन श्रद्धालु में जिन्होंने दुमेल कंट्रोल गेट पार किया और RFID कार्ड जो उनके हाथों में थे और लाठियां भी उनके हाथों में थी, इसके साथ साथ उन्होंने रेन कोट भी पहने थे और पानी की बोतलें साथ ली, क्योंकि जल प्रशासन गांदरबल बार बार उन्हें यह सूचना देते हैं कि सफर के दौरान ये जो जरूरी चीजें हैं वो साथ रखना ना भूलें। तो ये दुमेल कंट्रोल गेट पार करने वाले श्रद्धालु जो हैं उनमें 299 पुरुष, 190 महिलाएं, 11 बालक बालिकाएं, 5 साधु, 1 ट्रांसजेंडर एवं 146 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। तो बीते दिनों की तरह अगर हम बात करेंगे तो आज यात्रा जो पवित्र गुफा के तरफ रवाना हुए हैं हमारे श्रद्धालु, उनकी संख्या में कमी देखने को मिली है, क्योंकि कल जो यात्रा थी वो अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई जम्मू से ही, लिहाजा ये यात्री जो हैं वो परसों पहुंचे थे यहाँ, और दो तीन दिन यहाँ रुकते हैं बालतल बेस कैंप में, यहाँ घूमते हैं इधर उधर, यहाँ की सुंदरता देखते हैं, फिर जब उनकी अपनी बारी होती है तो वो पवित्र गुफा की ओर रवाना हो रहे हैं। तो ये यात्री अभी इतने ही यहाँ पे थे, 642 यात्री जो आज सुबह सवेरे जिनको पवित्र गुफा की तरफ जाने की अनुमति दी गई कड़ी सुरक्षा के बीच, उन्होंने अपना सफर आज दोपहर 4 बजे से शुरू किया, तो 7 बजे तक कुल 642 श्रद्धालु जो है वो पवित्र गुफा की ओर रवाना हुए। इस तरह जो यात्री कल पवित्र गुफा की तरफ दर्शन के लिए निकल पड़े थे, उन्होंने पवित्र गुफा जाकर माथा टेका, शिवलिंगम का दर्शन किया और साथ ही देश एवं घाटी की अमन शांति तथा विकास के लिए प्रार्थना की। देर रात गए तक यानी 9 बजे रात तक जो श्रद्धालु दर्शन करके वापस सुरक्षित बालतल पहुंचे, उनकी संख्या 2716 थी, तो इंजन में 1720 पुरुष, 801 महिलाएं, 35 बालक बालिका, 33 साधु, 11 साधियां, 2 ट्रांसजेंडर एवं 114 सुरक्षा कर्मी थे। और वो यात्री जो हैं उन्होंने यहाँ पे रात भर कायम किया है और रात्रि विश्राम के बाद आज उन्हें

0: और जाने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि जो श्रीनगर कारगिल राजमार्ग है उस पर कल गाड़ियों को जो यात्री कॉन्वॉय है उसको आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी
1: जी
0: गई, क्योंकि इससे पहले जो हमारी जम्मू राजमार्ग जो है उस पर भी कल कॉन्वॉय अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई। लिहाजा आज जो श्रद्धालु पवित्र गुफा की ओर रवाना हुए हैं वो गुफा पहुंचकर शिवलिंगम का

0: हंगाम पार करने के बाद उन्हें सीधा बालतल बेस कैंप की तरफ जाने की अनुमति दी जाएगी, जहां वो रात भर विश्राम करेंगे और कल सुबह सवेरे अगर उनकी बारी होगी तो उन्हें पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि आज भी मौसम बिल्कुल खुशगवार है। हालांकि सुबह सवेरे जैसे कि हमने पहले ही बताया, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और आकाश में बादल छाए हुए थे, ऐसी संभावना बनी हुई थी कि अभी वर्षा होगी, लेकिन ऐसा मौसम जो है वो यहाँ हर पल देखने को मिल रहा है। कभी वर्षा होती है, कभी धूप खिलती है, मौसम बदलता रहता है। लेकिन इस तरह की अगर जो भारी वर्षा भी हुई तो इस वर्ष इस तरह की कोई घटना अभी तक नहीं घटी जिससे यहाँ के ऐसे हालात पैदा हुए हैं, सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है या कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं। लेकिन इस दौरान भी जो हमारे श्रद्धालु हैं वो ऐसी वर्षा का आनंद लेते हुए पवित्र गुफा के ओर प्रस्थान करते रहे और बाबा बर्फानी के दर्शन से प्राप्त हुए।
1: जी
0: तो यहाँ का बिल्कुल मौसम आज अच्छा है, खुशगवार मौसम है। अगर कहीं धूल थी, गर्द गुबार कुछ था तो वो भी साफ हुआ है इस वर्षा के कारण, लिहाजा बिल्कुल माहौल साफ सुथरा देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ सफाई सुथराई का एक बेहतरीन इंतजाम है जो जिला प्रशासन ने किया है, उसके लिए बाजाब्ता तौर अलहदा महकमे जो है वो काम कर रहे हैं, तो सफाई सुथराई का यहाँ खास ख्याल रखा जाता है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे सेवादार हैं या छोटे छोटे दुकानदार हैं जिन्होंने अपनी रेडियां वगैरह कुछ यहाँ नस्ब की है और
1: जी
0: अपना छोटा मोटा कारोबार चलाते हैं, वो भी उनके साथ भी हमने बात की है, तो बार बार वो यही कहते हैं कि सफाई सुथराई का जो यहाँ ख्याल है वो रखा जाता है और स्वच्छता के हवाले से उन्होंने डस्टबिन जगह जगह कायम किए हैं ताकि यहाँ जो कूड़ा करकट है या कचरा जो है वो कहीं जमा ना हो जाए, उसको ठिकाने लगाने के लिए बाजाब्ता तौर वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो है एक तो बालटल में कायम किया गया और दूसरा सोनमार्ग में है, और उन्होंने इसके लिए ट्रैक्टर्स और दीगर व्हीकल जो है काम में लगाए हैं। हर जगह कचरा जमा किया जाता है, जो डस्टबिन वहां पे नस्ब किए गए हैं उनसे भी कचरा उठाया जाता है और वो
1: जी
0: वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो है, सेग्रीगेशन प्लांट जो है, वहां तक पहुंचाया जाता है। बाजाब्ता तौर जहाँ मुख्तलिफ अधिकारी जो है वो काम में लगे हुए हैं तो इस तरह सफाई सुथराई का भी खास ख्याल रखा जाता है। इसके साथ साथ जो हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से यहाँ घोड़े और खच्चर वाले हर साल आते हैं, सेवादार आते हैं, उन्हें बाजाब्ता तौर महकमे लेबर और एनिमल हस्बेंड्री जो दो डिपार्टमेंट्स हैं
1: जी
0: दोनों के पास रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, जिसके लिए बाजाब्ता तौर पुलिस वेरिफिकेशन होती है और पुलिस वेरिफिकेशन मिलने के बाद ही उन्हीं लोगों को बालतल में सेवा करने का मौका दिया जाता है। लेकिन
1: जी
0: इससे पहले हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहते हैं कि चाहे पूंछ, राजौरी, किश्तवाड़, बांडीपोरा, बारामूला या गांधरबल या दीगर अजला से जो बालतल की तरफ से घोड़े या खच्चर वाले आते थे, उन्हें पहले दो दो तीन तीन चार घोड़े या खच्चर होते थे तो उनके साथ एक शख्स होता, एक फर्द होता था। लेकिन इस साल जो इन्होंने बाजाब्ता तौर सर्कुलर जारी किया जिसमें साफ तौर पर वाजे कर दिया गया कि एक खच्चर जो है उसके साथ एक बंदा जरूर होना चाहिए, अगर उसके पास दूसरा खच्चर है तो उसके लिए दूसरा शख्स उन्हें साथ रखना। तो एक शख्स को हम कभी ये अलाउ नहीं करेंगे कि वो अपने साथ दो तीन घोड़े या खच्चर रख सकते हैं।
1: जी
0: तो इस तरह हजारों की तादाद में मुख्तलिफ अजला से यहाँ घोड़े और खच्चर वाले भी आए हैं, इसके साथ साथ गांडी वाले आए हैं, तो उनकी रजिस्ट्रेशन बाजाब्ता तौर की गई है, पुलिस वेरिफिकेशन की गई है। तो पुलिस वेरिफिकेशन आने के बाद जो उन्हें एनओसीज मिली है पुलिस डिपार्टमेंट से, तो उसके बाद उन्हें महकमे लेबर और महकमे एनिमल हस्बेंड्री ने रजिस्टर्ड किया है। रजिस्टर्ड करने के बाद उनके जो घोड़े या खच्चर हैं उनका बाजाब्ता तौर चेकअप किया गया,
1: जी
0: तो जब उनको फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दी गई और उनको टैगिंग की गई है, जो अपना कोड होता है उनको टैग करने का, वो लगाते हैं खच्चर या घोड़े हैं उनके कान में, तो वो लगा के उन्हें यहाँ काम करने का मौका फराहम किया गया। इस तरह
1: जी
0: हजारों की तादाद में यहाँ घोड़े वाले, खच्चर वाले और डांडी वाले जो हैं वो काम करते हैं, सेवादार हैं, और लंगर वाले जहाँ अपनी खदमात मयसर रखते हैं वही यहाँ के मकामी मजदूर जो हैं वो भी यहाँ सेवा करते हैं। और कमाल उन्हीं मजदूरों का है क्योंकि लंगर वालों से हमने बात की है, यात्रियों से हमने बात की है,
1: जी
0: दुकानदारों से हमने यहाँ बात की है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात की है, सभी लोग ये कहते हैं कि पैसे तो ये कमाते हैं, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, लेकिन उसके लिए भी बाजाब्ता तौर गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर रखा है, रेट जो है वो मुकर्रर किए गए हैं।
1: बिल्कुल
0: लेकिन इसके साथ साथ जो ये मेहनत करते हैं, हमने खुद देखा है, विजुअल्स हमने कैप्चर किए हैं यहाँ पे।

0: तौर वो सोशल मीडिया पे आज बाजाबता तौर वायरल चल रहे हैं, तो उनकी मेहनत कि किस तरीके से वो श्रद्धालु को अपने कांधों पे उठा के ये जो ऊंचे पर्वत है, कठिन रास्ता है, और इन कठिन रास्तों के बीच उन्हें आराम से पवित्र गुफा तक पहुंचाते हैं
1: जी
0: और शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित वापस बालतल पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ जो श्रद्धालु हैं उन्होंने इस बात का भी एतराफ किया कि यहाँ के लोग जो हैं इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, इन्हों इस तरीके से पेश आते हैं ऐसे सफर के दौरान भी। हालांकि अगर इंसान थकान महसूस करे, लेकिन इस तरीके से भी उनके चेहरों पर सिर्फ मुस्कुराहट देखने को मिली कि हमारे मेहमान हैं, तो हम मेहमानों के साथ कैसे पेश आए। जो हमारी सदियों से यहाँ चली आ रही रिवायत जो है, हम कोशिश करते हैं यहाँ के लोग के उसको बरकरार रखा जाए, और हमारे आने वाले चाहे श्रद्धालु है, चाहे पर्यटक है,
1: जी
0: देशी है, विदेशी है, उनके साथ इस तरह हम पेश आएंगे कि उनका दिल करे कि वो यहाँ ना वापस जाएं और बार बार यहाँ आने को दिल करे उनका, और खुशी से यहाँ आए ताकि यहाँ के लोगों का व्यवहार जो है वो बहुत अच्छा है, और इस पर का असर जो है बराह रास्त यहाँ के टूरिज्म पे है,
1: जी
0: तो हमारी मैशियत पे है। तो मैशियत का सवाल ये है ही, लेकिन हम मैं जो अपनी विरासत में हमें मिला है अपने असलाफों से, हमारी मेहमान नवाजी, खुश अखलाकी,
1: जी
0: उखवत, भाईचारा, उसको हम कभी नहीं बोलेंगे। ये जितने भी यहाँ मजदूर या लोग काम करने वाले, तिजारत पेशा अफराद या अधिकारी हैं, सरकारी विभागों के अधिकारी हैं, उन्होंने भी कहा कि हम अपने फराइज को अंजाम देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम ये कोशिश करते हैं कि हम जम्मू कश्मीर का नाम जो है, जो रिवायत यहाँ की है, उसको बरकरार रखें।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान, विस्तार में जानकारी देने के लिए।
0: शुक्रिया आपका।
1: श्रोतो, ये थे रहीम रिजवान, गांधरबल से अपडेट दे रहे थे किस तरह से जो है स्थानीय नागरिक प्रशासन के अधिकारी मिलकर काम कर रहे हैं। गर्ज यही है कि सभी तीर्थ यात्रियों की सेवा की जाए, उन्हें उनको जो है किसी भी बाधा का सामना ना करना पड़े, उनकी इस यात्रा को जो है यादगार बनाया जाए और वो खूबसूरत यादें, खूबसूरत लम्हात लेकर जो है वो वापस अपने अपनी जगहों को जाए। और इस कोशिश में जो है प्रशासन मुसलसल स्थानीय नागरिक के साथ मिलकर जो है इस चीज़ को यकीनी बना रहा है कि सभी तीर्थ यात्रियों की यात्रा जो है सफल, सुखद और मंगलमय हो। जैसा कि हमारे संवाददाता रहीम रिजवान भी बता रहे थे, खुशगवार मौसम के बीच जो है यात्रा जारी है। रुके पड़े तीर्थ यात्रियों को जो है पवित्र गुफा की ओर रवाना किया गया और वो बड़े खुशगवार मौसम में बड़ी जोश और उत्साह के साथ जो है पवित्र गुफा की ओर रवा दवा है, शिव जी के दर्शन प्राप्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और उनकी इच्छा जो है हमेशा से यही रही है कि यहाँ जब वो आते हैं, इस पवित्र यात्रा के लिए जब वो आते हैं, तो इस बात में कोई दोराय नहीं है कि यहाँ के लोगों से जो है सभी तीर्थ यात्री पर्यटक जो होते हैं वो खुश रहते हैं, क्योंकि वो व्यवहार देखकर जो है उनमें ये इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि जो सभी तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं उन्हें यह महसूस ना हो कि वो घर से दूर हैं, बल्कि वो अपने घर में हैं। और इस मेहमान नवाजी का सबूत जो है मुसलसल हम देते आ रहे हैं, और हमारे ईश्वर से यही प्रार्थना कि हमारे देश में जो है अमन, भाईचारे और प्यार मोहब्बत का जो पैगाम है वो बढ़ता रहे, और एक साथ मिलकर जो है हम अपने देश को आगे बढ़ाते रहे। और इस यात्रा को लेकर जो है जितनी भी मेहनत की जाती है पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, और उस कोशिश को जो है एक नई जहत तब मिलती है जब एक साथ मिलकर स्थानीय नागरिक, प्रशासन, यात्री, सुरक्षाकर्मी, हेल्थ प्रोफेशनल्स या बाकी जो अन्य सेवाएं हैं, सैनिटेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ किस्म के जो विभाग हैं, वो एक साथ मिलकर जो है एक कलेक्टिव एफर्ट उठाते हैं कि हमने जो है यात्रियों की सेवा करनी है और यात्रियों का ये सफ़र जो है यादगार बनाना है। आकाशवाणी की भी यही कोशिश मुसलसल पहले दिन से लेकर यही कोशिश कि सभी तीर्थ यात्रियों को अपडेट जो है कराते रहे, जो भी सूचनाएं हम तक पहुंचती है हमारी यही कोशिश रहती है कि हम वो सूचना जो है अपने सुनने वालों तक पहुंचाए, अपने यात्रियों तक पहुंचाए, अपने शिवभक्तों तक पहुंचाए। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि हम दोनों मार्गों पर जो है आप हमें सुन पा रहे हैं, पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर भी हम लाइव है।

आकाशवाणी की ट्रांसमिशन के माध्यम से और बालतल के मार्ग पर भी हम लाइव हैं। इंटरनेट के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH पर सुन रहे हैं, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म जो है वेव्स पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं, यूट्यूब की आकाशवाणी की आराधना चैनल पर भी हम लाइव हैं। गर्ज़ यही कोशिश है कि जितने लोगों तक हम इस वक्त पहुंच रहे हैं उन्हें हम बाखबर करें, उन तक हम अपडेट पहुंचाएं, हम उनकी इस यात्रा को जो है हम यादगार बनाएं, यही आकाशवाणी की मुसलसल कोशिश है। और इस कोशिश को जो है हम किस हद तक इसमें कामयाब हो पाते हैं, इसका जो है आप रिपोर्ट, इसका जो है आप रिज़ल्ट हम तक पहुंचा सकते हैं, हमारी टीम के साथ साझा कर सकते हैं। आप अपने विचार, अनुभव और कोई भी प्रश्न जो है वह आप हमारी टीम के साथ साझा कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से। हमारा मात्र एक हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर जो है हम आपको बताते चले, इस नंबर पर जो है आप हम तक जो है अपनी राय पहुँचा सकते हैं और अपने विचार जो है वह आप हम तक पहुँचा सकते हैं। आपको बताते चले कि इस ट्रांसमिशन के तई जो भी आपके विचार होंगे वो हम उन पर जो है हम काम करते हैं, और हमारी ये मुसलसल कोशिश रहती है कि उन चेंज्स को जो है हम मुमकिन बना पाए और उन चेंज्स पर हम काम कर पाए। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, टोल फ्री नंबर्स भी प्रशासन द्वारा आपके लिए रखे गए हैं। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट आप विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर जो है आप नए नए अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। हमारा मात्र एक हेल्पलाइन नंबर है 9596990954। इस नंबर पर जो है आप अपने विचार, अनुभव जो है, प्रश्न जो है हमारी टीम के साथ आप साझा कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुने, हमारा मात्र एक हेल्पलाइन नंबर है 9596990954। और इसके अलावा आप प्रशासन द्वारा दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी किस्म की जानकारी आपको चाहिए होगी, किसी भी किस्म की हेल्प आपको चाहिए होगी, आप इन नंबर्स पर जो है राबिता कायम कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये दोनों टोल फ्री नंबर्स आपको मिलेंगे। आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण में आप बने रहिए।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 9:25 होने को है, आइए अब समाचार सुनते हैं।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं इशफाक अमीन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान दहशतगर्दी से मुतासर 37 अफराद के नज़दीकी रिश्तेदारों में तकरीबन तकसीम किए। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद दहशतगर्दी के ढांचे को बड़ी हद तक कमज़ोर किया गया, अमन व कानून की सूरत हाल मजबूत हुई और मुतासर खानदानों को मसावी हकूक और नए मौके फराहम किए गए।
1: कई ऐसे परिवार थे जो आतंकवादी हिंसा में शिकार हुए और उनके परिजन लंबे समय से राह देख रहे थे कि जो कानून यहाँ का है उसमें उनको सरकारी नौकरी, लेकिन काफी लंबा समय लगा। कोशिश हो रही कि हर ऐसे व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके टेरर विक्टिम के सभी फैमिलीज के निकटस्थ परिजनों को सरकारी नौकरी, जो उसी क्रम में आज काफी लोगों को नौकरी दी गई और मुझे लगता है कि उनको एक सम्मानपूर्ण जीने का अवसर प्रशासन ने दिया है।
0: बीजेपी

माना किया जाता है बादल के मार्ग से अभी जो है रुके पड़ी थी रथ यात्री, और नए जो आ रहे शिव भक्त है उन्हें पवित्र गुफा पहुंचाया जाता है। मक्के में मौसमियात से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है आज बालतल के मार्ग पर जो है मौसम खुशगवार ही रहेगा। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से भी जो है यही खबर है कि जम्मू में जो है मौसम खुशगवार है और वादी में भी जो है आज मौसम खुशगवार ही रहेगा। और इस खुशगवार मौसम के बीच जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 पूरे जोश और उत्साह के साथ जारी है। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएँ आप तक पहुँचाते रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल, FM पहलगाम। देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के माध्यम से और इसके अलावा आप हमें आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता इस तारीख पहलगाम से जुड़ चुके हैं। आज के दिन के हवाले से, यात्रा के हवाले से क्या कुछ अपडेट्स है, आइए सुनते हैं। तारीख, स्वागत करता है आपका इस विशेष प्रसारण।
1: बहुत शुक्रिया जुबेद साहब। सबसे पहले इस विशेष प्रसारण के सभी श्रोताओं को मेरा शुभ प्रभात। तो आज 57 दिनों चलने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के आज 34 दिन पूरे हो गए हैं। तो आजकल मौसम का, जो सर्द मौसम या बारिशों के मौसम का दौरा है, तो पहलगाम से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पवित्र गुफा तक यात्रा मार्ग पर मान्य रूप से उबरालूद मौसम रहने का अनुमान है, जबकि बीच बीच में हल्की वर्षा और सुबह के समय कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है
0: जी।
1: दिन के दौरान तापमान विभिन्न स्थानों पर 12 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि वातावरण में नमी 85 से 95% तक बनी रह सकती है। दोपहर के समय कुछ स्थानों पर 35% तक हल्की वर्षा की संभावना भी जतलाई गई है। पहलगाम और आदर्शवर के आसपास सुबह हल्की वर्षा या बूंदाबांदी की साथ तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। चंदनवारी, शिशनाग और पंचतरणी के बीच यात्रा मार्ग पर मौसम सामान्य रूप से उबरालूद रहेगा। कुछ स्थानों पर गहरा ठंडी हवाएं और बीच बीच में हल्की वर्षा की संभावना है, जिसके कारण यात्रा मार्ग फिसलन भरा हो सकता है
0: जी।
1: पवित्र गुफा के आसपास मौसम सर्द बना रहेगा, जहां तापमान 7 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। इस पूरे क्षेत्र में बादल छाए रहेंगे और नमी का स्तर भी अधिक बना रहेगा। लगातार भारी वर्षा के कारण यात्रा मार्ग को हुए नुकसान की मरम्मत और आवश्यक रखरखाव के मद्देनजर पहलगाम मार्ग से श्री अमरनाथ जी यात्रा को फिलहाल अस्थायी रूप से मुअत्तल रखा गया है। संबंधित विभाग यात्रा मार्ग के पुनर्बहाली और सुरक्षा से जुड़े सभी कार्यों पर लगातार लगे हुए हैं। यात्रा को पुनर्आरंभ करने का निर्णय मौसम और मार्ग के संपूर्ण जो स्थिति का आकलन करने के बाद ही लिया जाएगा। इधर जम्मू के भगवती नगर आधार शिवर से बालतर मार्ग के लिए 74 छोटी बड़ी गाड़ियों में 1801 यात्रियों का जत्था घाटी के ओर बढ़ रहा है। इसमें अभी 1347 पुरुष, 351 महिलाएं, 89 साधु और 14 साध्वी शामिल है। ये जत्था लगभग अभी थोड़े देर बाद 11 बजे लगभग के करीब ट्रांसिट कैंप काजीगुंड पहुंचने वाला है, जहां से इसे बालतल आधार शिविर के ओर भेजा जाएगा
0: जी।
1: तो 57 दिनों की यात्रा के आरंभ से अब तक 470,929 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन कर चुके हैं, जबकि गुजश्ता दिन 2,943 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में

0: दर्शन किए हैं। और अभी जो इत्तला हमें मौसूल हुई है पवित्र गुफा से, तो वहाँ जो दर्शन का सिलसिला अभी शुरू हो चुका है, दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं और दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। इधर पहलगाम के नुनोनादार शिवर शिशनाग और पंचतरनी शेवरू से हजबी मामूल जो निलंबित यात्रा निलंबित रही है, यात्रा मार्ग और सभी दर्शनों पर उसके बावजूद भी विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी श्रद्धालुओं की सेवा सुरक्षा और आवश्यक सहूलियत की उपलब्धता के लिए पूरी निष्ठा के साथ अभी तैयार है, वहां रुके हुए हैं। सभी विभाग आपस में समन्वय और टीम वर्क की भावना के साथ यात्रा प्रबंध को सुचारू बनाने में जुटे हुए हैं और हर गुजरते दिन के साथ यात्रा से जुड़े सभी व्यवस्थाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। तो सुरक्षा की तरफ से बात है तो सुरक्षा बिल्कुल राष्ट्रीय राजमार्ग से लेके पवित्र गुफा तक दोनों मार्गों पर जो सुरक्षा के घेरे व्यवस्था की गई है। सुरक्षा बलों के जवान 24 घंटे पूरी सजगता और मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं ताकि हर श्रद्धालु की यात्रा सुरक्षित संगम और मंगल में बनी रहे। जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद तारिक विस्तार में जानकारी साझा करने के लिए।
0: बहुत शुक्रिया।
1: श्रोतो ये थे एस तारिक, पहलगाम के प्राचीन मार्ग से अपडेट दे रहे थे कि ऐसा बता रहे थे कि मौसम जो है पहलगाम के क्षेत्र में अबर आलूद ही रहेगा आज। महकमा मौसम विभाग से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है आज पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर जो है मौसम अबर आलूद ही रहेगा। वहीं हल्की से दरमियाने दर्जे की वर्षा की होने की भी संभावना जताई गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहलगाम के प्राचीन मार्ग से जो है फिलहाल यात्रा को स्थगित किया गया है और सभी तीर्थ यात्रियों को जो है आज भालतल के मार्ग से ही पवित्र गुफा की ओर रवाना किया जाएगा। जैसा कि हम आपको याद दिलाते चले, जब आप जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आते हैं तो आपको जो है काजीकुंड लांबर ग्राउंड पहुंचाया जाता है। काजीकुंड लांबर ग्राउंड से होते हुए आपको श्रीनगर ट्रांजिट कैंप पांथा चौक पहुंचाया जाता है, जहां पर आप जो है विश्राम कर सकते हैं। वहां पर जो है आपके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ रखी जाती हैं। वहां पर जो है आप किसी भी किस्म की दुविधा का सामना करना नहीं पड़ता है। वहाँ आपको खाने पीने के लिए, रात को विश्राम करने के लिए, और उसके बाद जो है वहाँ से आपको कड़ी सुरक्षा के बीच जो है बालतल के मार्ग गांधरबल के रास्ते से जो है आपको लिया जाता है। आपको बताते चले, जब आप गांधरबल के मार्ग से जाते हैं तो आपको जो है दुमेल से होते हुए ब्रारी मार्ग और उसके बाद संगम, और उसके बाद संगम से होते हुए 3 किलोमीटर सफ़र का तय करना पड़ता है। संगम से जो है आपको महज 3 किलोमीटर सफ़र तय करना पड़ता है। ताहम इस क्षेत्र में भी जो है आपको कई जगहों पर खड़ी चढ़ाई चढ़नी होती है और ऊपरी क्षेत्र में जो है कब मौसम करवट बदलेगा इस चीज़ का जो है अंदिया नहीं रहता है। सभी तीर्थ यात्रियों से जो है शिव भक्तों से यही निवेदन कि आप जो है अपने साथ ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो अपने साथ ज़रूर रखें। वाटरप्रूफ बैग्स, अम्ब्रेला, लेसेस वाले शूज़ का उपयोग करें ताकि यात्रा के दौरान जो है आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और कोशिश करें कि जब आप नीचे स्थल पर हो और वहीं पर जो है बहुत सारे काउंटर्स आपको मिलेंगे, चाहे मेडिकल काउंटर्स की बात हो, हेल्पलाइन डेस्क की बात हो, खान पान के सामान जो है वो काउंटर्स आपके लिए बनाए गए हैं और बाकी अन्य सेवाएँ जो है फैसिलिटीज़ जो है आपके लिए रखी गई है। कोशिश करें कि अगर आपको लग रहा है कि आपको की दिक्कत का सामना है, नीचे ही जो है आप डिजिग्नेटेड काउंटर्स की ओर जाए और वहाँ पर जो आपको अधिकारी मिलेंगे वो आपकी सहायता के लिए रहते हैं, वो आपकी सेवा में लगे रहते हैं, स्थानीय नागरिक आपकी सेवा में लगे रहते हैं। और उनसे आप बात करें, उनसे आप मशवरा करें और उस चीज़ का जो है आप समाधान निकालें, उसके बाद ही जो है आप ऊपरी क्षेत्र की ओर जाए, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में जो है ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ताज़ा सूचना के अनुसार जो है अभी तक 1040 तीर्थ यात्रियों ने जो है आज सुबह से शिवजी के दर्शन प्राप्त किए हैं, पवित्र गुफा पहुंचकर जो है शिवलिंगम के दर्शन प्राप्त किए हैं। 140 तीर्थ यात्रियों में 59 पुरुष, 22 महिलाएं, 4 बालक, 3 साधु और 52 सुरक्षाकर्मी शामिल है। कुल मिलाकर 140 तीर्थ यात्रियों ने जो है शिवजी के दर्शन प्राप्त किए हैं। और सुबह तड़के जो है जो मुख्य भगवती नगर बेस कैंप से जो काफिला निकला है वो कुछ ही घंटों में जो है लांबर ग्राउंड काजीगुंड पहुंचने वाला है। और हमें मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है खुशगवार मौसम में ये काफिला इस वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर रवाना दवा है। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएँ आप तक पहुँचा दे रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल, FM पहलगाम। देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के माध्यम से, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स के अलावा आप हमें आकाशवाणी की यूट्यूब चैनल आराधना पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, इस वक्त पांथा चौक ट्रांजिट कैंप से हमारे साथ हमारे संवाददाता इमरान नाइको रिपोर्ट्स के साथ, ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। क्या कुछ अपडेट्स है आज के दिन के हवाले से, आज की यात्रा के दिन के हवाले से, आइए सुनते हैं। इमरान, स्वागत करते हैं आपका इस विशेष प्रसारण में।
1: जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आज अमरनाथ जी यात्रा हुई है, कल भी दर्शन हुए, और लेकिन श्रीनगर

0: से कोई यात्रियों की जो कॉन्वाई है वो यहाँ से नहीं निकल पाई, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले से ही कहा था। लेकिन आज सुबह श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैंप से अमरनाथ जी यात्रियों का जो काफिला है, जो जत्था है, वो बालतल की तरफ रवाना हुआ और इसमें 150 से ज्यादा अमरनाथ जी यात्री थे। तकरीबन 5 से 6 इसमें गाड़ियां थी जिनमें अमरनाथ जी यात्रियों को रवाना किया गया। इनमें मेल, फीमेल, साधु साध्वी और कुछ बच्चे भी शामिल थे। और ये वो यात्री हैं जो यहाँ श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैंप में परसों शाम को आए थे। पूरे दिन कल यहाँ इन्होंने इस ट्रांजिट कैंप में स्टे किया और आज सुबह यहाँ पर यहाँ से वो पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किए गए हैं। इसके अलावा मजीद यात्री भी यहाँ पहुंचे थे कल शाम को और उन्होंने भी यहाँ नाइट स्टे किया। हालांकि अभी कई सारे यात्री जो है इसी ट्रांजिट कैंप में है और उम्मीद है कि मजीद जो कॉन्वाई है यहाँ से रवाना की जाएगी और मजीद यात्रियों को कल यहाँ से रवाना किया जाएगा
1: जी।
0: तो अभी अमरनाथ जी यात्रा पूरा मन तरीके से जारी है और श्रीनगर में आज भी मौसम बिल्कुल सुहाना है, धूप खिली हुई है और पिछले 1-2 दिनों से मौसम में बिल्कुल श्रीनगर में बेहतरी देखने को मिली है। और इस सुहाने मौसम के बीच में हम देख रहे हैं कि अमरनाथ जी यात्री यहाँ पहुंच रहे हैं और यहाँ से इन्हें पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया जा रहा है। और जैसे कल पूरे दिन यहाँ यात्री रुके थे और कई सारे यात्रियों से हमारी बात भी हुई, यहाँ जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, तो अमरनाथ जी यात्री जो है अरेंजमेंट्स को लेके काफी खुश दिखाई दे रहे हैं और वो एक सेटिस्फैक्ट्री फीडबैक अपना दे रहे हैं। और किसी तरह की अभी तक उनकी कोई शिकायत नहीं है यात्रा को लेके। तो अभी हम देख रहे हैं कि एक तो अमरनाथ जी यात्रियों के लिए प्रशासन की तरफ से ये सुविधाएं रखी गई है, दूसरा ये कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, वॉलंटियर्स, लोकल्स है, वो भी अपनी जो खिदमात है, अपनी जो सर्विसेज है अमरनाथ जी यात्रा को लेके प्रोवाइड कर रहे हैं
1: जी। श्रोताओं, तकनीकी खराबी के बाइस हमारे संवाददाता इमरान नायकू से हमारा रब्ता कर चुका है। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि इनसे कनेक्ट करने के लिए। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

गायत्री मंत्र वैदिक संस्कृति की, हिंदू संस्कृति की एक महान धरोहर है। संस्कृत में इस मंत्र की परिभाषा कुछ यूं की गई है, गायंतम त्रायते इति गायत्री। गायंतम यानी जो भी कोई इसका उच्चारण करता है, त्रायते यह उसकी रक्षा करता है। वेदों द्वारा प्रदत्त इस महान मंत्र में अत्यधिक शक्ति है। इसकी महानता के दो मुख्य कारण हैं। पहला, इसके स्वरों में अद्भुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस हैं, और दूसरा कारण है इसमें समाहित गूढ़ भाव। यह मंत्र एक प्रार्थना है आंतरिक ज्ञानोदय के लिए, जो मानव जीवन का अंतिम ध्येय है, जिसके बाद मांगने के लिए और कुछ नहीं बचता, जिसके बाद सारे मार्ग अपने आप आलोकित होते हैं, ईश्वर प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। गायत्री मंत्र में तीन प्रकार के स्वर हैं, अनुदात, उदात एवं स्वरित। इन स्वरों में गायत्री मंत्र का यदि जाप किया जाए तो इसके अद्भुत कंपन में वो क्षमता है कि मानव जीवन में दुखों का निवारण कर दे। यदि ध्यान दें तो आप देखेंगे कि मनुष्य के अधिकांश दुखों का कारण है अज्ञान। यदि अज्ञान को ज्ञान के प्रकाश द्वारा आलोकित कर दिया जाए तो आप पाएंगे कि मनुष्य के बहुत से दुख दूर हो जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अज्ञानेन तु ज्ञानम आवृत्तम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञानेन अज्ञान के आवरण से हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि ढकी हुई है, और इस कारण मानव जाति दुखों के भंवर में फंसी तिलमिला रही है। गायत्री मंत्र इस अज्ञान के आवरण को निकाल फेंकने का एक अचूक रामबाण नुस्खा है। एक बार अज्ञान का यह पर्दा हटा, हम इस काबिल हुए कि सच्चाई को देख और समझ सकें, तो तुरंत उन सारे दुखों का अंत हो जाएगा जो अज्ञान के गर्भ से जन्म कर हमारे जीवन रूपी चंदन पर सर्पों की भांति लिपटे हुए हैं। ये सारे दुख वास्तविक भले ही हों पर नाजायज हैं, अवैध हैं। मित्रों, ध्यान से सुने इस गूढ़ सत्य को। हम ब्रह्मांड में रहते हैं और हमारे भीतर एक ब्रह्मांड बसा हुआ है। इस सत्य के दोनों ही पहलू समझने आवश्यक हैं। हम ब्रह्मांड में रहते हैं, सभी जानते हैं।

जो बाहरी ब्रह्मांड का प्रतीक है, और अपने आंतरिक स्वरूप में गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है हमारे आंतरिक सूर्य के प्रति, और ये आंतरिक आदित्य है हमारी चेतना। गायत्री मंत्र हमें शक्ति के, ऊर्जा के इन दो महत्वपूर्ण स्रोतों से जोड़ता है, एक बाहरी सूर्य से, एक आंतरिक आदित्य से, हमारी चेतना से। अतः गायत्री मंत्र में प्रकाश की प्रार्थना है, धियो योनः प्रचोदयात्, अर्थात हम सभी ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हों। यहां एक ध्यान देने योग्य बात है, हालांकि प्रार्थना एक अकेले व्यक्ति द्वारा की जा रही है, परंतु फल की प्रार्थना, ज्ञानोदय की कामना सभी के लिए की जा रही है। गायत्री मंत्र में धियो योनः प्रचोदयात् की कामना सर्वप्रधान है, अकेले प्रार्थी के लिए नहीं। यह प्रार्थना सभी का समावेश करके की गई है, अकेले के हित की मांग नहीं है इसमें। गायत्री मंत्र में सवितुः शब्द का प्रयोग है सूर्य के संदर्भ में। सूर्य आलोकित तो करता है, परंतु स्वयं प्रदूषित नहीं होता। ठीक इसी तरह आपकी आंतरिक चेतना का सूर्य आपके मन को, आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को प्रकाश देता है, किंतु इनमें से किसी के द्वारा चेतना का सूर्य स्वयं प्रदूषित नहीं होता। इस बात के गहन अर्थ को आत्मसात करके यदि हम अपनी चेतना के सूर्य को प्रकाशमान कर सकें, तो समझिए ज्ञानोदय हुआ। ज्ञानोदय का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वयं के वास्तविक स्वरूप को समझना। हम मात्र यह शरीर नहीं हैं, क्योंकि शरीर को देखने वाला कोई और शरीर के भीतर बैठा है। हम केवल विचार, मन, भाव या बुद्धि भी नहीं हैं, क्योंकि इन सब की ओर निहारने वाला कोई और भीतर बैठा है, और यह निहारने वाला और कोई नहीं, आपकी चेतना है। इस चेतना पर शरीर और मन का कोई असर नहीं पड़ता। इस चेतना को गायत्री मंत्र में ओम के प्रणव शब्द से दर्शाया गया है। यह चेतना शरीर की तीनों ही स्थितियों में भू, भुवः, सुवः, अर्थात जागृत, स्वप्नावस्था एवं निद्रावस्था में व्याप्त रहती है, अपनी चौथी तुरीयावस्था को लेकर। चेतना की तुरीयावस्था स्थिति है मौन की, शून्य की। मनुष्य की चेतना इस शून्य की स्थिति के द्वारा इस मौन की स्थिति में अन्य तीन स्थितियों में व्याप्त रहती है। यही शून्य की स्थिति चेतनावस्था सूर्य के समरूप बताई गई है सवितुः शब्द द्वारा। बाहरी सूर्य की तरह यह चेतना का आंतरिक सूर्य भी दैदीप्यमान, दैवी स्वरूप है, भर्गो देवस्य है। ऐसे दैदीप्यमान दैवी चेतना सूर्य पर धीमहि ध्यान लगाते हैं। मैं यह चेतना हूं जो ओम के नाम से दर्शाई गई है, जो मौन है, जो शून्य है, जो जागृत, स्वप्न एवं निद्रा तीनों ही अवस्थाओं में व्याप्त है, जो बाहरी सूर्य की तरह दैवी और दैदीप्यमान है। हम ऐसे चेतना सूर्य पर धीमहि ध्यान लगाते हैं। यदि हम यह भावार्थ सच्चे अर्थों में समझ सकें, तो जानिए ज्ञानोदय हुआ। गायत्री मंत्र का जप करने की पद्धति क्या है? यदि आप गायत्री मंत्र बाहरी सूर्य नारायण के प्रति प्रार्थना के रूप में जप रहे हैं, तो इसका जाप दिन के समय ही करें, और यदि अपने आंतरिक सूर्य, अपनी चेतना के प्रति ज्ञानोदय की भावना का ध्यान कर रहे हैं, तो दिन या रात किसी भी समय करें। सर्वोत्तम समय है सूर्योदय का, इसके बाद सबसे उत्तम समय है सूर्यास्त के क्षण। इन दोनों में से किसी भी समय भगवान भास्कर की ओर मुख करके एक आसन पर बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और मध्यम स्वर में, स्वर न बहुत धीमा हो और न बहुत ऊंचा,

बार गायत्री मंत्र का पाठ करें। 7 बार, क्योंकि योग के अनुसार मानव शरीर में 7 महत्वपूर्ण चक्र हैं। हर चक्र का ध्यान करते हुए 1 बार गायत्री का पाठ करें। इसके उपरांत 7 बार मन ही मन में जाप करें, अपने आंतरिक सूर्य का ध्यान करते हुए, अपनी चेतना में ज्ञानोदय की जागृति की कामना लिए। इसके पश्चात मौन की शून्य की स्थिति में कुछ देर रहें, तत्पश्चात आंखें खोलें। मित्रों, बाहरी सूर्य की आराधना के रूप में गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है, एक प्रेयर है, और आंतरिक सूर्य अपनी चेतना की जागृति एवं ज्ञानोदय के भाव के रूप में गायत्री मंत्र एक ध्यान है, एक मेडिटेशन है। सारे दिन मन में यह भाव लिए रहें कि आपके अपने भीतर आपकी चेतना एक आंतरिक सूर्य है, जो साक्षी है आपके शरीर की, आपके मन की, भावनाओं एवं विचारों की, जो आलोकित कर रही है आपके भीतरी ब्रह्मांड को, ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य आलोकित कर रहा है बाहरी ब्रह्मांड को। इस भीतरी चेतना को ओम शब्द से संबोधित किया गया है, जो शून्य और मौन की अवस्था को लेकर आपके जीवन की तीनों अवस्थाओं, जागृत, स्वप्न एवं निद्रा में व्याप्त है। जिस आसन का आप उपयोग कर रहे हों, वह आसन केवल इसी जप के लिए आप ही उपयोग करें, ताकि जिन वाइब्रेशंस की उत्पत्ति हो रही हो वो अपवित्र न हो। गायत्री मंत्र के भाव से, प्रार्थना से अपनी चेतना को हर समय आलोकित रखिए, और फिर देखिए कि यह प्रकृति, यह विश्व, यह रचना कितनी सुंदर है। इसकी सुंदरता की हर कड़ी में उस रचनाकार का आभास है। गायत्री मंत्र की यह प्रार्थना आपका संपूर्ण समर्पण है उस रचनाकार के प्रति।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz। देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के माध्यम से, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR, आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स तथा आकाशवाणी की यूट्यूब चैनल आराधना पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, आपको याद दिलाते चले, आज तड़के जुम्मे के भगवती नगर बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 28वां जत्था जो है घाटी की ओर रवाना किया गया। कुछ ही वक्त में जो है ये सभी तीर्थ यात्री लंबर ग्राउंड काजीगुंड पहुंच जाएंगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो है कुल मिलाकर आज तक जो है इस वर्ष 4.5 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने अभी तक जो है शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। पवित्र गुफा पहुँच कर जो है बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त किए हैं। अब आज दिन की अगर बात करें तो आज हमें मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है अभी तक 140 तीर्थयात्रियों ने बालतल के मार्ग से जो है पवित्र गुफा पहुंचकर शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। वहीं मौसम विभाग से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है आज बालतल के मार्ग पर जो है मौसम खुशगवार ही रहेगा और इस खुशगवार और खुश फिजा माहौल में जो है तीर्थ यात्री बड़े जोश और खरोश के साथ जो है इस वक्त पवित्र गुफा की ओर रवाना दवा है और कड़ी सुरक्षा के बीच जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपके लिए रखी गई है। जगह जगह पर जो है इस मार्ग पर आपको काउंटर्स मिलेंगे जो आपकी सहायता के लिए लगे रहते हैं। स्थानीय नागरिक, प्रशासन के नागरिक और स्थानीय जो लोग हैं वो मिलकर जो है इस कोशिश में लगे रहते हैं कि सभी तीर्थ यात्रियों की जो यात्रा है वो यादगार बने और इस यात्रा के दौरान जो है उन्हें किसी भी किस्म की दुविधा का सामना ना करना पड़े। बात चाहे जो मुख्य भगवती नगर बेस कैंप से लेकर जो है रस्ते रस्ते पर जो है आपको अधिकारी मिलेंगे जो आपकी सेवा में लगे रहते हैं। ताहम आप सभी तीर्थ यात्रियों से यही गुजारिश, यही निवेदन कि आप जो है प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते रहे ताकि आपकी यात्रा पूरी तरह से जो है संपूर्ण तरीके से जो है सफल रहे, सुखद रहे, मंगलमय रहे, यही आकाशवाणी की मनोकामना है। आकाशवाणी क्षण-क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz। देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के माध्यम से आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। श्रोताओ, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 पूरे जोश और उत्साह के साथ खुशगवार मौसम में इस वक्त बालतल के मार्ग पर पवित्र गुफा की ओर शिव भक्त जो है रमा दमा है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, बर्फ से रुकी चोटियां, बहती नदियां और शिव भक्तों का अद्भुत वातावरण जो है हमें इस वक्त लगातार देखने को मिल रहा है बालतल के मार्ग पर। श्रोतो, ये यात्रा जो है केवल धार्मिक शिक्षा ही हमें नहीं देती बल्कि प्रकृति के संरक्षण का भी संदेश देती है। हिमालय की ये पवित्र भूमि हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, इसलिए प्रत्येक यात्री का ये कर्तव्य है कि वे पर्यावरण की रक्षा करें, स्वच्छता को बनाए रखें और लगातार प्रशासन द्वारा दिए गए आ रहे जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करते रहे ताकि आपकी यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय हो। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, पूरी यात्रा के दौरान जो है आप इन दिशा निर्देशों का पालन करते रहे, अपना RFID कार्ड पूरी यात्रा के दौरान पहने रखे और कोशिश करें कि एक समूह में यात्रा करें। ऊपरी क्षेत्र में जो है आप चप्पल का उपयोग ना करें, लेसेस वाले शूज़ लगा कर ही आप ऊपरी क्षेत्र की ओर जाएं और कोशिश करें कि अपने साथ जो है आप गर्म मलबूसात, वाटरप्रूफ बैग, अम्ब्रेला, विंड शीटर्स और बाकी जो अन्य चीज़ें हैं वो आप अपने साथ रखें, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में कब मौसम करवट लेगा इस बात का जो है अंदिया नहीं रहता है। तो इन सब चीज़ों का पहले ही ख्याल रखें और कोशिश करें कि जब आपको कुछ भी लगे, अपनी सेहत में जो है तब्दीली महसूस हो, आपकी सेहत ठीक नहीं लग रही हो, तो आप नीचे ही जो है डेजिग्नेटेड काउंटर्स पर जो है मेडिकल काउंटर जो लगे हुए हैं वहाँ जो डॉक्टर बैठे हुए हैं उनसे आप मशवरा करें और उनसे मशवरा करने के बाद ही आप ऊपरी क्षेत्र की ओर जाए, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में जो है आपको ऑक्सीजन की कमी भी रहती है, ऊपरी क्षेत्र में जो है आपको खड़ी चढ़ाई भी चढ़नी होती है और कच्चा रास्ता रहता है ऊपरी क्षेत्र में। तो इन चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखते हुए आप पहले की कोशिश करें कि नीचे ही जो है ट्रांजिट कैंप्स पे ही जो है या बाकी जो अन्य काउंटर्स हैं वहाँ पर जाकर जो है आप इन सेवाओं का फ़ायदा उठाए और उसके बाद ही आप जो है पवित्र गुफा की ओर जाए और जो भी दिशा निर्देश प्रशासन की ओर से दिए जाते हैं उनका पालन करते रहे, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ की ओर ना जाए और एक समूह में यात्रा करें और अपने साथ जो है एक पर्ची रखें जिसमें आप अपना नाम, अपनी जगह का नाम और अपने साथी का नाम जो है ज़रूर लिख के रखें और अपना RFID कार्ड जो है वो आप पूरी यात्रा के दौरान पहने रखें और उसी RFID कार्ड के जरिए से जो है आपको जगह जगह पर ट्रैक किया जाता है। और कोशिश करें कि पूरी यात्रा के दौरान जो है आप जो भी एडवाइजरीज आती हैं उनको फॉलो करते रहे, उससे जो है आपकी यात्रा सफल और सुखद रहेगी। और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना कि आप सभी तीर्थयात्रियों की यात्रा जो है वो यादगार बने और ये खूबसूरत लम्हा, ये यादगार लम्हा जो है आप अपने साथ ले जाए। और इस बात में कोई दोराय नहीं है कि स्थानीय प्रशासन, स्थानीय नागरिक और लोग जो है राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर जो है सभी की ये कोशिश है कि सभी तीर्थयात्रियों की सेवा की जाए। जो मुख्य भगवती नगर बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक जो है जगह जगह पर आपको सहायता होगी, जगह जगह पर आपकी सहायता के जो अधिकारी आपको मिलेंगे जो 24/7 आपकी सेवा में लगे हुए हैं। और सरकार की ये मुसलसल कोशिश है कि सभी तीर्थयात्रियों की यात्रा जो है यादगार बने। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है अभी तक 4.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने जो है अभी तक शिवजी के दर्शन प्राप्त किए हैं। वही कल दिन की हवाले की अगर बात करें तो 2000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने कल दिन भी जो है पवित्र गुफा पहुँच कर शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। आज हमें मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है अभी तक 200 से अधिक तीर्थयात्रियों ने जो है शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। और हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना कि सभी शिव भक्त की जो यात्रा है वो सफल और सुखद रहे, यही हमारी मनोकामना है। आकाशवाणी

0: छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
1: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम एक महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz। देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के माध्यम से आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोताओं, आपको बताते चले, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का आज 28वां जत्था जो है घाटी की ओर रवाना किया गया। कुछ ही पलों में ये जत्था जो है लंबर ग्राउंड काजीगुंड पहुंचने वाला है। काजीगुंड से होते हुए इस जत्थे को जो है, इन सभी तीर्थ यात्रियों को जो है, ट्रांजिट कैंप पांथा चौक पहुंचाया जाएगा, जहां से होते हुए जो है भोजन विश्राम के बाद जो है इन्हें बालतल के मार्ग से पवित्र गुफा की ओर रवाना किया जाएगा। हमें मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है अभी तक 322 तीर्थयात्रियों ने आज शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। पवित्र गुफा पहुँचकर जो है हिमलिंगम के दर्शन प्राप्त किए हैं। इन तीर्थयात्रियों में जो है 148 पुरुष, 69 महिलाएं, 15 साधु, 8 साध्वी, 82 सुरक्षाकर्मी शामिल है। कुल मिलाकर 322 तीर्थयात्रियों ने जो है अभी तक पवित्र गुफा पहुंचकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं। आकाशवाणी क्षण-क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेगा, बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा, इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए, ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम ले और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए, ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए।

0: वंदया पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम एक महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

7 MHz FM पहलगाम 100.1 MHz देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के माध्यम से आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वीव्स पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। श्रोता, आपको याद दिलाते चले, आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का 28वां जत्था जो है घाटी की ओर रवाना किया गया। ये तीर्थयात्री जो है काजीकुंड लांबर ग्राउंड पहुंच चुके हैं और वहां पर जो है उनका विश्राम होगा और खान पान होगा और इसके बाद जो है इन तीर्थयात्रियों को जो है श्रीनगर ट्रांजिट कैंप पांथा चौक लाया जाएगा। पांथा चौक में जो है इनका विश्राम होता है और रात भर जो कई एक यात्री जो है वहाँ पर ठहरते और सुबह तड़के जो है उन्हें पवित्र गुफा की ओर रवाना किया जाएगा। जैसा कि आपको याद होगा कि पहलगाम के प्राचीन मार्ग से जो है फिलहाल यात्रा स्थगित है और इस वक्त जो है सभी तीर्थयात्री या रुके पड़े तीर्थयात्री जो है वो बालतल के मार्ग से जो है पवित्र गुफा पहुँच जाते हैं और बालतल के मार्ग से ही उन्हें पवित्र गुफा पहुँचाया जाता है। वहीं मौसम विभाग से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है आज बालतल के मार्ग पर मौसम खुशगवार ही रहेगा, तहम हल्की सी वर्षा होने की भी संभावना जताई गई है। वक्फे से ऊपरी क्षेत्र में वर्षा होने की संभावना जताई गई है, तहम मौसम जो है आज खुशगवार ही रहेगा। वही आपको याद दिलाते चले श्रोताओ, अगर आपके मन में जो है कोई विचार, अनुभव या प्रश्न जो है आप इस विषय प्रसारण के तहत रखते हो तो आप हमारी टीम के साथ जो है वह आप साझा करें हमारे मात्र एक हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से। हमारा मात्र एक हेल्पलाइन नंबर है 9596990954। नंबर एक बार फिर सुने 9596990954 पर जो है आप अपने विचार, अनुभव और प्रश्न जो है हमारे टीम के साथ साझा कर सकते हैं। वही प्रशासन द्वारा दिया गया टोल फ्री नंबर भी जो है आपके लिए रखा गया है। टोल फ्री नंबर पर जो है आप किसी भी किस्म की जानकारी हासिल कर सकते हैं। किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो आपको तो आप जो है उन टोल फ्री नंबर्स पर राबिता कायम कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर्स आपको जो है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेंगे और कोई भी अन्य जानकारी की ज़रूरत आपको हो तो आप जो है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट विज़िट करें। वहाँ पर जो है आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन मुहैया होगी और ऑन स्पॉट इंफॉर्मेशन के लिए जो है आप नज़दीकी काउंटर्स पर जाए, डेजिग्नेटेड काउंटर्स पर जाए, चाहे स्वास्थ्य के तई आपको मसला हो या किसी भी किस्म की हेल्पलाइन आपको ज़रूरत हो, हेल्प की ज़रूरत हो तो आप जो है नज़दीकी काउंटर्स पर जाए। जगह जगह पर आपके लिए जो है वो काउंटर्स बनाए गए हैं, चाहे आप पहलगाम के मार्ग से जा रहे हो या बालतल के मार्ग से जा रहे हो। जैसे कि आज जो है दिन भर बालतल के मार्ग से ही सभी तीर्थयात्री पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जा रहे हैं। बालतल के मार्ग पर भी जो है आपको स्थानीय नागरिक, स्थानीय प्रशासन और बहुत सारे सरकारी अधिकारी जो है जगह जगह पर आपको मिलेंगे। आपकी सहायता के लिए उन्हें रखा गया और आपकी सेवा में वो 24 घंटे लगे रहते हैं। आप उन डेजिग्नेटेड काउंटर्स पर जाए, उनसे राबिता कायम करें, उनसे जो है आप फ़ायदा उठाएं क्योंकि वो काउंटर्स जो है आपके लिए लगाए गए हैं ताकि आपकी जो यात्रा है वो यादगार बने। इस यात्रा के दौरान जो है आपको किसी भी किस्म की दुविधा का सामना ना करना पड़े और हाँ, आप पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है, सभी शिव भक्तों पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जो है प्रशासन के साथ कॉपरेट करें और जब भी आप कॉपरेट करेंगे तभी जो है ये यात्रा आपकी सफल, सुरक्षित और मंगलमय रहेगी। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना कि सभी तीर्थयात्रियों की यात्रा सफल, सुखद और शांतिपूर्ण तरीके से हो पाए, यही हमारी मनोकामना है। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जो है आपको टोल फ्री नंबर्स मिलेंगे। टोल फ्री नंबर्स पर जो है आप किसी भी किस्म की जानकारी हासिल कर सकते हैं। श्रोताओ, दिन के 12 बज चुके हैं, आइए अब समाचार सुनते हैं।
1: गंभीर रूप से प्रभावित हुए, ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
2: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। लोकसभा में आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होना निर्धारित है। वहीं राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा होनी है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कथा कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को कंटेंट क्रिएशन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं। श्री मोदी ने कल नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरेंडोस के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की घोषणा की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ से तबाही के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। श्री नड्डा ने असम नागालैंड सीमा से लगे शिवसागर जिले के नेपाली खुटी क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता, पुनर्वास और मुआवजे सहित हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश

0: Jharkhand, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, parts of Northeast India and the Andaman and Nicobar Islands for the day. India's javelin throwers Ashish Yadav and T. Dharanidharan, along with discus thrower Amanat Kamboj, secured places in the final rounds of their respective events at the World Athletics Under-20 Championships in Eugene in the USA. The finals will be played on Sunday. In hockey, teams from Odisha, Punjab, Jharkhand and Madhya Pradesh have advanced to the semi-finals of the 16th India Junior Men's National Championship Division A after winning their quarter-final matches in Coimbatore and Tamil Nadu yesterday. Benchmark domestic equity indices were trading on a positive note in forenoon trade today. The Sensex gained 225 points to 78,806, while the Nifty added 23 points to 24,647 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
1: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम एक महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम। देश के विभिन्न भागों में आप हमें डीटीएच की माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। इसके अलावा आप हमें आकाशवाणी की मोबाइल ऐप, न्यूज़ ऑन एआर तथा आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, कुछ ही क्षणों में हमारी साथी पजमान आपके साथ जुड़ेगी। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

विशेष प्रसारण श्यामा नाज यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, न्यूज़ ऑन एयर की आराधना चैनल डीटीएच और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। मैं आपकी उद्घोष का पजमान फेरोज आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगी अभी से लेकर शाम 6 बजे तक।

विशेष प्रसारण श्यामाना जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालताल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर। श्रोताओं, कुछ ही क्षणों में आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे, जहां से आप समाचार समाप्त करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। लोकसभा की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद परमाणु हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: इसके बाद श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही 11:00 बजे शुरू हुई। इस दौरान मंत्रियों ने सदन के पटल पर कई दस्तावेज रखे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सदस्य अपने विचार स्वतंत्र रूप से रख सकता है, लेकिन यह व्यवस्थित और सार्थक ढंग से होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। मौसम विभाग ने बताया है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य सभी 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश होने की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण चमोली और बागेश्वर जिलों में आज 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर घटा है। हालांकि तेज बारिश के कारण भुवनेश्वर के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य में फिर से तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास का काम जारी है। प्रशासन ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ से तबाही के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता, पुनर्वास और मुआवजे सहित हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया।

0: energetic West Bengal, Odisha, Madhya Maharashtra, Konkan and Goa today. And with that, we end this news bulletin.
1: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आपके साथ आज 12 बजे तक का दर्शन अपडेट साझा करना चाहेंगे। तो कुल मिला के 464 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या 222, महिला 107, बालक 15, साधु 8, सुरक्षाकर्मी 112। तो कुल मिला के 464 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। तमाम यात्रियों से निवेदन है कि आपको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर के द्वारा। हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है 9596990954 9596990954। इसके अलावा आप हमारे टोल फ्री नंबर भी नोट कर लीजिए, जम्मू के लिए है 1800180071 98, 1800180071 98। श्रीनगर के लिए 1800180071 99, 1800180071 99। ईमेल आईडी भी आप हमारी नोट कर लीजिए, akashvanibalchal@gmail.com, akashvanibalchal@gmail.com। एक बार मैं फिर ये रिपीट करूँगी, akashvanibalchal@gmail.com। शन शन के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। बहुत से मामलों पर अपोजिशन के शोरगुल की वजह से लोकसभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक और राज्यसभा की कार्रवाई 2:15 बजे तक मुलतवी कर दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तहलका के साबिक एडिटर तरुण तेजपाल को 2013 के जिंसी ज्यादती के मामले में मुजरिम करार दिया है। आज उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में बहुत तेज बारिश की पेशगोई की गई है। हॉकी इंडिया ने AHF एशिया कप 2026 के लिए 18 अरकान पर मुश्तमिल खवातीन की जूनियर टीम का ऐलान किया है, जो इस महीने की 30 तारीख से चीन के शहर मौकी में शुरू होगा। और भारत के भाला फेंकने वाले खिलाड़ी आशीष यादव और टी धरणीधरन और डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी अमानत कंबोज 20 साल तक की उम्र के आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। लोकसभा की कार्रवाई नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलों पर अपोजिशन के शोरगुल के सबब दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जब सुबह 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी में एटमी बम के मुतासरीन को खराज अकीदत पेश किया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आज जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराए जाने के सानहे को 81 साल हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमश 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: ऐवान में हिरोशिमा और नागासाकी में एटमी बम के मुतासरीन की याद में खामोशी भी इख्तियार की गई। इसके बाद जनाब बिरला ने वक्फे सवाल चलाने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन अरकान ने तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला उठाया। अपोजिशन के अरकान इस सिलसिले में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान का मुतालबा कर रहे थे। स्पीकर मौसूफ ने कहा कि वक्फे सवाल ऐवान की कार्रवाई का एक अहम हिस्सा है, जो हर मेंबर को मामला उठाने का मौका फराहम करता है। जनाब बिरला ने मजीद कहा कि पार्लियामेंट बहस करने, सवाल उठाने और नजरियात के बामाने तबादले के लिए है। शोरगुल जारी रहा तो लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा की कार्रवाई नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलों पर अपोजिशन के शोर शराबे के पेश नज़र दोपहर 2:15 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पहली बार मुलतवी होने के बाद जब ऐवान की कार्रवाई दिन में 12 बजे फिर शुरू हुई तो सदर नशी CP राधाकृष्णन ने शोरगुल के दरमियान वक्फे सवाल चलाने की कोशिश की। इस दौरान अपोजिशन अरकान ने अपनी नारेबाजी जारी रखी। शोर शराबा जारी रहा तो सदर नशी ने कार्रवाई 2:15 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट और मौसलात और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक पार्लियामानी कायमा कमेटी के चेयरपर्सन निशिकांत दुबे ने मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग की माफी को भारतीय कवानीन, आईन और पार्लियामेंट की जीत करार दिया है। पार्लियामेंट के अहाते में नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इससे वजीर आजम की ताकत का इजहार होता है, जो 140 करोड़ लोगों की क्यादत करते हैं, और इससे ये बात भी जाहिर होती है कि भारत के साथ जो कोई भी कारोबार करने का ख्वाहिशमंद है उसे भारतीय कानून की पाबंदी करनी होगी।
2: ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है, और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा।
0: बॉम्बे हाईकोर्ट ने तहलका के साबिक एडिटर तरुण तेजपाल को 2013 के जिंसी ज्यादती के एक मामले में कसूरवार गर्दाना है, जिसका ताल्लुक उसकी

0: एक साबिक जूनियर साथी से है। बॉम्बे हाईकोर्ट के गोवा बेंच की जस्टिस नीला गोखले और जस्टिस अमित जमसंदेकर पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने तेजपाल को ताजिरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत कसूरवार गर्दाना है। अदालत ने कि वो आज तीसरे पहर सजा सुनाएगी। समाअत के दौरान तेजपाल ने कहा कि वो सियासत का शिकार हुआ है और दो लड़कियों का बाप है, लिहाजा उसके साथ नरमी बरती जाए। गोवा सरकार की तरफ से पेश होने वाले वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से इस्तदा की कि उसे ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए ताकि एक मजबूत पैगाम जा सके। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तेजपाल की साबिक जूनियर साथी ने नवंबर 2013 में एक होटल के एलिवेटर में जिंसी ज्यादती का इल्जाम लगाया था। 2021 में जेली अदालत ने उसे बरी कर दिया था, लेकिन गोवा सरकार ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज उत्तराखंड, झारखंड, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण और गोवा में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मुल्क के शुमाल मशरक के हिस्सों और अंडमान निकोबार जजायर में भी शदीद बारिश का इम्कान है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए आईएमडी के सीनियर साइंसदान अखिल श्रीवास्तव ने कहा कि कौमी राजधानी में कल तक औसत से शदीद बारिश हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि इस पूरे हफ्ते यहां हल्की बारिश का इम्कान है। उड़ीसा में महानदी समेत बड़े दरियाओं में सतेआब में कमी आने के सबब सैलाब की सूरतहाल बदस्तूर बेहतर हो रही है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: उड़ीसा में महानदी समेत सभी बड़े दरियाओं में पानी की सतह कम होने से सैलाब की सूरत हाल रफ्ता रफ्ता बेहतर हो रही है। इस वक्त हीराकुट बांध के 8 गेट खुले हैं ताकि उसके पानी की सतह को कंट्रोल किया जा सके। सतही आब में कमी के बावजूद सैलाब से मुतासिरा अफराद की मुश्किलात बरकरार है और जिंदगी के मामूलात की बहाली एक बड़ा चैलेंज है। इस दौरान कल रात से शदीद बारिश जारी रहने से राजधानी भुवनेश्वर में मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज केओंझर और मयूरभंज अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट और बकिया जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल 20 अजला में बारिश के लिए अलर्ट भी जारी किया गया। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: जम्मू कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बिला रुकावट जारी है और अब तक मुल्क भर से लाखों अकीदतमंद पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के शुरू होने के बाद से 4,70,000 से ज्यादा अकीदतमंद पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा 28 अगस्त तक जारी रहेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज साबिक वजीर खारजा सुषमा स्वराज को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर दाखिला ने मोहतरमा सुषमा स्वराज को शाइस्तगी और सादगी की मिसाल करार दिया। जनाब शाह ने कहा कि उन्होंने तंजीम से लेकर हुकूमत तक अपनी सभी फराइज नज्म व जब्त वकार और पुख्ता अज्म के साथ अंजाम दिए। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन के मौकी में होने वाले एएचएफ जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 रुकनी खवातीन की भारतीय जूनियर टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में 18 खिलाड़ी हैं जिसकी क्यादत मिडफील्डर खैदम शिलेइमा चानू करेंगी। भारत के भाला फेंकने वाले खिलाड़ियों आशीष यादव और टी धरणीधरन ने अमेरिका के शहर यूजीन में जारी 20 साल तक के उम्र के खिलाड़ियों की आलमी चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। इसके अलावा डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी अमानत कंबोज ने हतमी मरहले में पहुंच गए हैं। फाइनल इतवार को खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बहुत से मामलों पर अपोजिशन के शोरगुल की वजह से लोकसभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक और राज्यसभा की कार्रवाई 2:15 बजे तक मुलतवी कर दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तहलका के साबिक एडिटर तरुण तेजपाल को 2013 के जिंसी ज्यादती के मामले में मुजरिम करार दिया है। आज उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में बहुत तेज बारिश की पेशगोई की गई है। हॉकी इंडिया ने एएचएफ एशिया कप 2026 के लिए 18 अरकान पर मुश्तमिल खवातीन की जूनियर टीम का ऐलान किया है, जो इस महीने की 30 तारीख से चीन के शहर मौकी में शुरू होगा। और भारत के भाला फेंकने वाले खिलाड़ी आशीष।

0: अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मौकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरानीधरन तथा डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित हो गई है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 के लिए स्थगित की गई। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्वतीय और सीमावर्ती पर्यटन अवसंरचना से जुड़े प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र ने राज्यों को प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायालयों में स्वीकृत पदों और रिक्तियों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है।
2: जब काउंसिल की बैठक चल रही हो, कोई भी इस प्रकार की अव्यवस्था, शोरगुल या किसी अन्य तरीके से इस अव्यवस्थित तरीके से बोलते समय किसी अन्य सदस्य के बीच में बाधा नहीं डालेगा।
0: विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 13वें दिन में प्रवेश कर गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच मानसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। एक रिपोर्ट।
3: झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन भाजपा और एनडीए विधायकों ने जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की। वहीं मंत्री चंद्रा लिंडा ने कहा कि इस मामले में सत्ता या विपक्ष नहीं बल्कि परीक्षा माफिया असली दोषी है। इस बीच मामले की जाँच कर रही सीआईडी ने रांची और लखनऊ से 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें टीडीपीएल कंपनी का अकाउंटेंट भी शामिल है। मामले में अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। विवाद को सुलझाने के लिए सरकार की 4 मंत्रियों वाली उच्च स्तरीय कमेटी आज छात्रों के साथ वार्ता कर सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महवेश रहमान।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार के उस हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें कहा गया है कि नीट स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं में डॉक्टर्स एसोसिएशन भी शामिल है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वो नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है, या तो एक चरण में या फिर संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य और उन्नत के समान 2 चरणों में। सरकार ने कहा कि उसने पेपर लीक और प्रणालीगत

0: खामियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के संचालन में व्यापक सुधार किया है। पीठ ने कहा है कि वो सभी पहलुओं पर विचार करेगी और सभी पक्षों से अपने जवाब और सुझाव दाखिल करने के लिए कहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बंबई उच्च न्यायालय ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में आज दोषी ठहराया है। न्यायालय की गोवा बेंच की जस्टिस नीला गोखले और अमित जमसंदकर की खंडपीठ ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी पाया है। इनमें विश्वास या अधिकार के पद का दुरुपयोग कर दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और किसी महिला को निर्वस्त्र करने की नियत से हमला करने से संबंधित धाराएं शामिल हैं। गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे एक कड़ा संदेश जाएगा कि ना का मतलब ना होता है। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पोत सुरक्षा का माहौल तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर खतरे, ड्रोन हमले, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, डिजिटल नेटवर्क, सूचना प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले जोखिमों ने समुद्री सुरक्षा को नया आयाम दिया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पोत सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि बंदरगाह की सुरक्षा एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।
1: There is actionable recommendation to strengthen India's port security framework and make the proposed Bureau of Port Security a robust, responsive and future-ready institution. Let us work together for a safe maritime India, a strong maritime India and a Viksit Bharat. Kyunki desh ki suraksha sarvopari hai aur hum desh ke liye जी रहा हूं और देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, दैट शुड बी द कमिटमेंट।
0: भाजपा सांसद तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग की माफी को भारतीय संसद की जीत बताया है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय कानून का पालन करना होगा।
2: ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रादेशिक सेना पर बात की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने केरलम बाढ़, ओडिशा चक्रवात और हाल ही में असम में आई बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य तथा जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में प्रादेशिक सेना की भूमिका की सराहना की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं।
3: अब तक 4,70,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों की तादाद में यात्री, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे वगैरह शामिल हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल यात्रा सिर्फ बालतल के रास्ते से ही जारी है क्योंकि पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, प्रशासन और आम शहरियों की सराहना की है। याद रहे ये यात्रा 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। से इश्फाक शाह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन EIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र

0: कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल तक मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़क संपर्क टूट गया है, वहीं प्रमुख नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है।
1: प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल रात से जारी बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़कें बाधित हुई हैं। कुछ मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी देखी गई है। राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा है और कई गाढ़ गडेरे भी उफान पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को पूरी तरह सतर्कता बरतने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में नदी नालों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि
2: बरसात के लिए आज देहरादून, बागेश्वर और चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बरसात लगातार चल रही है, कई जनपदों में हो रही है। और नदियों के जलस्तर की बात करें तो वर्तमान में अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, वाणगंगा, यमुना और शारदा का स्तर बढ़ रहा है।
1: इस बीच चार धाम यात्रा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जारी है और प्रशासन यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उधर ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 द्वार खुले हुए हैं।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है। अभी जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 स्लुइस गेट खुले हुए हैं। पानी का स्तर घटने के बावजूद बाढ़ से प्रभावित लोगों की मुश्किलें बनी हुई है और सामान्य जीवन को बहाल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इस बीच कल रात से हो रही लगातार भारी बारिश ने राजधानी भुवनेश्वर में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर की कई सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है जिससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है। हालांकि दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा में बारिश कम होने की उम्मीद है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ के बाद स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संस्कृत के श्लोक को साझा करते हुए कहा कि जिसमें सभी प्रकार के श्रेष्ठ वनस्पतियों तथा औषधियां पैदा होती हैं वो पृथ्वी माता विस्तृत और स्थिर हो। विद्या, शौर्य, सत्य, स्नेह आदि सद्गुणों से पालित पोषित कल्याणकारी और सुख साधनों को देने वाली मातृभूमि की हम सदैव सेवा करेंगे। भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले एएचएफ जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में 2 खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धारणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 78,790 पर, जबकि निफ्टी 10 अंक गिरकर 24,635 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए और राज्यसभा की बैठक दोपहर 3:15 तक के लिए स्थगित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मौकी में होने वाले एएचएफ एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरानीधरन और डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। आप समाप्त कर रहे एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आपके साथ 2 बजे तक का दर्शन अपडेट साझा करना चाहेंगे। कुल मिला के 659 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या 297, महिला 190, बालक 15, साधु 8,

श्रोताओं जुड़े हुए हैं आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के संग, जो आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम पर।

0: श्रोताओं, पल पल के अपडेट्स हम आपके साथ साझा करते हैं। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता जावेद मेहराब साहब, जम्मू भगवती नगर से। जी जावेद साहब।
1: जी जी पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा आज एक दिन स्थगित रहने के बाद यहाँ भगवती नगर निवास स्थान से रवाना हो गई है और मौसम की बेहतरी के साथ ही यात्रा को यहाँ से उसी जोश जज्बे और हर्षोल्लास के साथ रवाना किया गया। आज भी लगभग 1800 के करीब श्रद्धालु यहां से रवाना हुए और जानकारी के मुताबिक श्रद्धालुओं का यह जत्था बालताल निवास स्थान भी पहुंच गया है। याद रहे कि श्रद्धालु रोजाना यहां दर्शन कर वापस भी लौट रहे हैं, सड़क रेल के माध्यम से अपने घरों को लौट भी रहे हैं। इधर मौसम विभाग की तरफ से बारिशों की भविष्यवाणी फिर एक बार सामने आई है। हालांकि सावन के महीने में अक्सर मौसम की परिस्थितियां बदल जाती है, ऐसा अक्सर होता है और इसका सबसे ज्यादा असर कई बार राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ता है और प्रशासन को यात्रा कई बार राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन की वजह से स्थगित भी करनी पड़ती है, जैसा हमने पिछले इस एक महीने के अंदर कई बार देखा। लेकिन फिलहाल तीर्थ यात्रा के लिए एक और जत्था जो है वो निवास स्थान पर बना हुआ है, जो कल की तैयारियों में लगातार जारी लगा हुआ है और अभी तक जो मौसम है वो बिल्कुल कहीं आबरालूद है और कहीं कहीं मौसम विभाग के मुताबिक बारिशों का भी सिलसिला चलेगा। लेकिन अभी जो शहर में है मौसम बिल्कुल साफ है और बिल्कुल ठीक है मौसम, और जिसकी वजह से तीर्थयात्री भी यहाँ निवास स्थान पर जो कल के लिए तैयारियां उसकी प्रक्रियाओं में जुड़े हुए हैं और श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए जो तीर्थयात्रा के क्रम को उसी जोशो खरोश के साथ रखा गया है यहाँ निवास स्थान भगवती नगर में, उसी उत्साह के साथ श्रद्धालु तमाम तरह की जो उनको सुविधाएं मिल रही थी वो उसी के हिसाब से मिल रही है और तमाम यहाँ खाने पीने की, रहने की, आराम करने की, योगा की और उसके अलावा जो भी तीर्थ यात्रा के दौरान चिकित्सा और साथ किस तरह से आपने इस पहाड़ी श्रृंखला में अपना सफर तय करना है, तमाम तरह की जो प्रबंधन है वो पूरी तरह से अनुशासित तरीके से रखे गए हैं और जो तीर्थयात्री भी हैं वो बराबर उन एडवाइजरीज का पालन भी कर रहे हैं और लगातार ये यात्रा रिकॉर्ड तोड़ अभी संख्या तक पहुंच चुकी है उसी अनुशासन की वजह से, क्योंकि तमाम संस्थान जो लगे हुए हैं वो तीर्थ यात्रा को एक अनुशासित तरीके से चला रहे हैं और संख्या जरूर कम हुई है लेकिन तीर्थ यात्रियों का जोश, तीर्थ यात्रियों के लिए बनाए गए जो प्रबंधन है, उनके लिए जो तैयारियां रखी गई है वो बिल्कुल उसी तरह से है। रहने का, खाने का, पीने का यहाँ सभी तरह का इंतजाम है, खासतौर पर चिकित्सा का, खासतौर पर आपको जब यात्रा के लिए निकलना होता है उसमें किस तरह का आपने पालन करना है एडवाइजरीज का, वो सारी चीजों की ट्रेनिंग और उसके अलावा योगा, आपकी स्वास्थ्य को लेकर जो चिकित्सा होती है उसको भी पूरी तरह से यहाँ इंटैक्ट रखा गया और खासतौर पर बिजली की, पीने के पानी की, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल उसी तरह से है और तीर्थ यात्री भी इस यात्रा को लेकर उसी जोश जज्बे का के साथ चल रहे हैं और बराबर यहाँ निवास स्थान से जो यात्रा है लगातार चल रही है। हमें उम्मीद है कि आगे भी ये यात्रा चलेगी, सिर्फ इसमें मौसम की कई बार बाधाएं होती हैं, जैसे अभी मौसम विभाग की तरफ से बारिश की भविष्यवाणी फिर से एक बार सामने आई है, लेकिन ऐसा अक्सर सावन के महीने में होता है। इस बार जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिस तरह से कर्मचारी और मशीनरी लगी हुई है वो साथ साथ ही भूस्खलन के कई बार वाकात होते हैं या कई बार बादल फटने के भी वाकात सामने आए, जिसकी वजह से कई बार यात्रा को स्थगित करना पड़ता है, लेकिन वो सभी जो कदम उठाए जाते हैं वो तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा, उनकी उनके बाजाबता उनको किस तरह से बेहतर तौर पर घाटी पहुंचाया जाए उसी को लेकर किए जाते हैं। उनकी सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता के तौर पर रखी गई है और पहली प्राथमिकता के तौर पर उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी चलने की इजाजत होती है और पूरी सुरक्षा प्रबंधनों के साथ ये काफिला, चाहे संख्या कम हो, ज्यादा हो, जैसा भी, जैसी भी परिस्थितियां हो, उसमें किसी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और पूरी तरह से जो पुलिस सुरक्षा बल तमाम

0: यात्रा की एजेंसी, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, प्रशासन, कर्मचारी सब तीर्थ यात्रा के आखिरी दिन तक अपने कार्य में लगे हुए हैं और इस आखिरी पड़ाव में भी तीर्थ यात्रा को सभी तरह की सुविधाएं मिल रही हैं और तीर्थ यात्रा लगातार यहाँ से जारी।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: बहुत धन्यवाद।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, पल पल के अपडेट्स हम आपके साथ साझा करते हैं। फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता एस तारिक साहब अनंतनाग से। जी तारिक साहब,
1: आपका बहुत शुक्रिया। इस कारण दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ जी का आज 23वां दिन पूरे हो चुके हैं। पहलगाम से श्री अमरनाथ जी के पवित्र गुफा तक यात्रा मार्ग पर आज सामान्य रूप से अब्र आलूद मौसम है, जबकि शाम के समय बीच बीच में हल्की वर्षा और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। दिन के दौरान तापमान विभिन्न स्थानों पर 15 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ है, जबकि पहलगाम में सख्त 21 डिग्री सेल्सियस का भी देखा जा रहा है, जबकि वातावरण में नमी 50 से 95% है। इस समय कुछ स्थानों पे हल्की सी वर्षा भी हो रही है। चंद्रवाड़ी, शिवनाग और पंचतरणी के बीच यात्रा मार्ग पर मौसम सामान्य रूप से अब्र आलूद बना हुआ है। कुछ स्थानों पर शाम के समय कोहरा, ठंडी हवाएं और बीच बीच में हल्की वर्षा की संभावना भी है, जिसके कारण यात्रा मार्ग फिसलन से भरा हुआ हो सकता है। पवित्र गुफा के आसपास मौसम सर्द बना हुआ है, तहम दर्शन की प्रक्रिया बराबर जारी है। लगातार भारी वर्षा के कारण यात्रा मार्ग को हुए नुकसान की मरम्मत और आवश्यक रख रखाव भी जारी है, जिसके कारण पहलगाम मार्ग से श्री अमरनाथ जी यात्रा को फिलहाल स्थायी रूप से मुअत्तल रखा गया है। इधर जम्मू के भगवती नगर आदर्शवर से बालतल मार्ग के लिए 74 छोटी बड़ी वाहनों में 1801 यात्रियों का जत्था घाटी प्रवेश करके बालतल के पड़ाव पहुंच चुका है, जिसमें 1347 पुरुष, 351 महिला निवासी साधु और 14 साध्वी भी शामिल थे। 57 दिनों की यात्रा के आरंभ से अब तक 4,70,929 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन कर चुके हैं, जबकि गुजश्ता दिन 2,943 श्रद्धालु ने पवित्र गुफा में दर्शन किए हैं। इस समय रिपोर्ट फाइल करने तक 700 से अधिक यात्रियों ने दर्शन मुकम्मल कर लिया है और दर्शन का सिलसिला भी जारी है। जी वर्मा
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।

0: विशेष प्रसारण श्रेया मनाजी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रोताओं, पल पल के अपडेट्स हम आपके साथ साझा करते हैं। फोन लाइन पर जुट चुके हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन साहब रामबन से। आइए जानते हैं क्या कुछ अपडेट लेके आए हैं ये यात्रा के हवाले। जी तस्कीन साहब।
1: जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि आज सुबह जो यात्रा एक दिन तक हाल्ट रहेगी के बाद दोबारा बहाल की गई और सुबह जो जम्मू से जो काफले निकले बालतल के रास्ते जाने वाले तो उसमें 28वां काफला था आज, तो उसमें जो 1801 यात्री सवार थे जो यहाँ बालतल के तरफ रवाना किए गए, तो उनका जो वक्फा रहा यहाँ बनहाल के लांबर ग्राउंड में जहाँ पर उनको नाश्ता वगैरह कराया गया, तो उसके बाद कश्मीर की तरफ रवाना किया गया। इसी तरह जो कश्मीर से वापस जो बालतल से जो वापस अमरनाथ यात्रा का जो काफले आ रहे थे तो वो रामबन डिस्ट्रिक्ट से पार होकर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहे हैं, इस वक्त जम्मू की तरफ बढ़ रहे हैं और इस दौरान जो रामबन बनहाल सेक्टर के बेशतर हिस्से में जबरदस्त बारिशें हो रही है पिछले करीबन आधे घंटे से। अलबत्ता अभी तक जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है उस पर कोई असर नहीं पड़ा है बारिशों की वजह से, ट्रैफिक मामूल के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। और अभी जो जैसे कि ये सुबह 7 बजे से जो पैसेंजर ट्रैफिक जम्मू से छोड़ा गया था वो भी चल रहा है और जो कश्मीर से यात्रा निकलने के बाद 11:30 बजे शेड्यूल रखा गया है कश्मीर से काजीगुंड के टनल से जम्मू की तरफ आने के लिए, लेकिन जब यात्रा में गाड़ियां कम हो और जल्द वो निकल जाती है तो उस वजह से जो ट्रैफिक को थोड़ा पहले ही रिलीज किया जाता है और वो ट्रैफिक भी इस वक्त जम्मू की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल जो बारिशें कुछ पार्ट्स पर हो रही है नेशनल हाईवे के रामबन बनहाल सेक्टर में, अलबत्ता जो हाईवे है इस पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा, तेज बारिशें रामबन में हो रही है लेकिन मजमूई तौर पर जो हाईवे है वो ट्रैफिक के लिए बहाल है और ट्रैफिक अपने अपने मंजिलों की तरफ बढ़ रहा है। जी
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।

0: जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

विशेष प्रसारण श्रेया मनाजी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, खराब मौसम या रास्ते में किसी भी प्रकार की रुकावट होने पर कृपया प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और ऑफिशियल जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तमाम यात्रियों से निवेदन है कि किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन के द्वारा। हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है 9596990954 9596990954। इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर भी नोट कर लीजिए, श्रीनगर के लिए है 1800-180-7199, 1800-180-7199। जम्मू के लिए है 1800-180-7198, 1800-180-7198। इसके अलावा ईमेल आईडी भी नोट कर लीजिए, akashvanibaltal@gmail.com, akashvanibaltal@gmail.com।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आपकी यात्रा मंगलमय, सुरक्षित और सुखद रहे। सफ़र के दौरान सभी नियमों का पालन करें, प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का सम्मान करें और अपने

0: कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

विशेष प्रसारण श्रीयामाना जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। तमाम यात्रियों से निवेदन है कि यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखें, प्रकृति का संरक्षण करें और अन्य यात्रियों के प्रति सहयोग और सद्भावना का व्यवहार रखें। किसी भी आपातकाल या असुविधा की स्थिति में तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर। श्रोताओं, एक अच्छी यात्रा वही है जो सिर्फ सुहानी ही नहीं बल्कि सुरक्षित और व्यवस्थित भी हो। अक्सर हम जल्दबाजी में कुछ बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो बाद में परेशानी का कारण बनती है। इसलिए चाहे आप लंबी दूर की यात्रा कर रहे हो या किसी नए रास्ते पर जा रहे हो, कुछ बातों का नियमित रूप से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।

विशेष प्रसारण श्रेया मनाजी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर। श्रोताओं आइए बालतल में रिकॉर्ड की गई आरती का आनंद लेते हैं।

सभी भक्तजन भोले बाबा के चरणों में बैठकर भोले बाबा की पवित्र आरती का दर्शन कर रहे हैं, आरती श्रवण कर रहे हैं। आप सभी भक्तजन बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ, प्रीति के साथ, आनंद मन से भोले बाबा के भजन का ध्यान करेंगे।

0: बोलिए शंकर भगवान के
1: जय,
0: धर्म के
1: जय,
0: अधर्म का
1: नाश हो,
0: प्राणियों में
1: सद्भाव हो,
0: विश्व का
1: कल्याण हो,
0: गौ माता की
1: जय,
0: मात पिता की
1: जय,
0: गुरु जनों की
1: जय,
0: सभी संतों की
1: जय,
0: सभी भक्तों की
1: जय,
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय,
0: आज के आनंद की
1: जय,
0: भारत माता की
1: जय,
0: शंकर भगवान की
1: जय,
0: शंकर भगवान के परिवार की
1: जय,
0: शंकर भगवान के गणों की
1: जय,
0: शंकर भगवान के भक्तों की
1: जय,
0: अमरनाथ स्वामी की
1: जय,
0: बाबा बर्फानी की
1: जय,
0: नमः पार्वती।

बाल तल में रिकॉर्ड की गई आरती समाप्त कर रहे थे। इसी के साथ ही हमारी आज की सभा समाप्त होती है। आपको बता दें कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बालतल में हमारे साथ ही इंजीनियर्स थे जावेद अहमद लोन, इरशाद अहमद लोन और शौकत अहमद। मैं आपकी साथी उद्घोष का पजमान फेरोज़, इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारूक वानी और श्री गुलाम रसूल आखून। यात्रा का विशेष प्रसारण लिए हम आपकी सेवा में कल प्रातः 6:53 पर फिर उपस्थित होंगे। जब तक के लिए शुभ यात्रा, शुभ रात्रि, जय हिंद।

लक्ष्मण का समझाए के राम बहुले पाँव, सीता लक्ष्मण रह गए पंचवटी के छाँव। सीता जी की मांग पूरी करने के लिए प्रभु श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे चल पड़ते हैं और प्रभु राम का तीर लगने पर मारीच राम जी की आवाज़ में हाय लक्ष्मण पुकार उठते हैं। यह सुन सीता घबरा उठती हैं और गुस्से में जानकी जी लक्ष्मण को कठोर वचन कहते हुए प्रभु राम को खोजने के लिए वन की ओर भेजती हैं। उसके पश्चात साधु के वेश में रावण पंचवटी में सीता से भीख मांगने पहुंचते हैं।

लक्ष्मण रेखा पार करने पर रावण असली रूप धारण करके सीता का हरण करते हैं। अब राम लक्ष्मण पंचवटी पहुंचकर सीता को ना पाकर विलाप करते हुए घायल जटायु से मिलते हैं। गिद्धराज राम लक्ष्मण को सीता हरण की दिशा बताते हैं और सीता की खोज करते हुए दोनों भाई शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। यह देख शबरी अत्यधिक भक्ति में लीन हो जाती हैं।

राजभवन और उसके बाहर नगर में भी उत्सव का रंग छाया हुआ है। राग रंग के उत्साह से भरे पुरवासी आते जाते दिखाई देते हैं और स्त्रियां नृत्य करती और गीत गाती दिखाई देती हैं।

राजभवन का आंगन किलकारियों से गूंज उठता है। चारों भाई घुटनों के बल चल रहे हैं, माताएं बलैया ले रही हैं और राजा दशरथ झुनझुना बजा रहे हैं।

0: श्रावण मास के पवित्र अवसर पर प्रस्तुत है द्वादश ज्योतिर्लिंग पर आधारित ये कार्यक्रम, जिसमें आज आप जानेंगे श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम ओम नमः शिवाय।
1: भारत की पवित्र भूमि पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारिका के पास दारुकावन नामक स्थान पर स्थित है। यह स्थल न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम भी है। नागेश्वर का अर्थ है सर्पों के ईश्वर, जो भगवान शिव के एक दिव्य रूप को दर्शाता है। यह स्थान शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ की कथा, शक्ति और वातावरण आत्मा को शांति और ऊर्जा से भर देता है। प्राचीन मान्यताओं और अद्भुत वास्तुशिल्प से सुसज्जित यह मंदिर श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा एक ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति है जो जीवन भर स्मरणीय रहती है। गुजरात के सौराष्ट्र तट पर द्वारिका नगरी, यह एक भूमिगत गर्भगृह में दुनिया के 12 स्वयंभू ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित है। बैठे हुए भगवान शिव की ऊंची मूर्ति और एक विशाल उद्यान जिसमें एक तालाब है, इस शांत स्थान के प्रमुख आकर्षण हैं। कुछ पुरातात्विक उत्खननों में इस स्थल पर 5 प्राचीन नगरों के होने का दावा भी किया गया है। माना जाता है कि नागेश्वर को

0: दारुक वन के नाम से जाना जाता था। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर को नागेश्वर महादेव मंदिर, नागनाथ मंदिर और नागेश्वर मंदिर जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। भगवान शिव के भक्तों का मानना है कि जो लोग भगवान नागेश्वर की पूजा करते हैं वो नकारात्मकता से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ मंदिर में विशिष्ट वास्तुकला की झलक मिलती है। नागेश्वर शिवलिंग पत्थर से बना है, जिसे द्वारिका शिला के नाम से जाना जाता है, जिस पर छोटे छोटे घेरे बने हुए हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य में द्वारिका से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 10वें स्थान पर आता है। यहाँ पर भगवान शिव को नागों के देवता के रूप में पूजा जाता है। नागेश्वर का अर्थ है नागों के देवता। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रत्येक पत्थर, हर कथा और हर प्राचीर शिव भक्ति की गहराई को दर्शाता है। यहाँ का वातावरण, मंत्रोच्चार, घंटियों की ध्वनि और भक्तों की आस्था मिलकर एक ऐसा दिव्य अनुभव रचते हैं जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। यहाँ आकर हर व्यक्ति अपने भीतर के द्वेष, अहंकार, भय यानी किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना को त्याग कर शिवमय हो जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, मोक्ष और शिव के सानिध्य का अनुभव है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के उन दुर्लभ तीर्थों में से है जहां इतिहास, पौराणिकता, आस्था और अध्यात्म एक साथ मिलते हैं। यहां की हर कथा, हर परंपरा और हर उत्सव शिव भक्ति का जीवंत उदाहरण है। यदि आप जीवन में एक बार भी इस पावन स्थल पर पहुंचते हैं तो निश्चित ही आपके मन, मस्तिष्क और आत्मा में शिवत्व का संचार होगा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग वह स्थान है जहां शिव स्वयं अपने भक्तों के कष्ट हरते हैं, जहां हर सांस में ओम नमः शिवाय गूंजता है और जहां हर भक्त को मिलता है मोक्ष का मार्ग। शिव की महिमा, नागेश्वर की गरिमा, यही है भारत की सनातन संस्कृति का सार। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो तीनों लोकों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले माने जाते हैं। इति दत्तवरः सोऽपि शिवेन परमात्मना शक्तः सर्वं तदा कर्तु संभूव न संशयः एवं नागेश्वरो देव उत्पन्नो ज्योतिषां पतिः लिंगस्पस्त्रिलोकस्य सर्वकाम प्रदः सदा एतद्दयः शृणुया नित्यं नागेशोद् भवमादरात् सर्वान् कामानि यादधि मान महापातक नाशनान। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो मनुष्य उसकी उत्पत्ति और महात्म्य संबंधी कथा को सुनता है वह पापों से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करता है। यहाँ रुद्राभिषेक, बिलुपत्र अर्पण, महामृत्युंजय जाप, श्रृंगार पूजन और आरती जैसे प्रमुख पूजन किए जाते हैं। विशेष रूप से महाशिवरात्रि पर हजारों भक्त पूजा करते हैं। यहाँ सावन मास और महाशिवरात्रि पर विशेष भीड़ और भक्ति का माहौल देखने को मिलता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है, जहाँ भगवान शिव की कृपा सहज ही प्राप्त होती है।
1: ओम नमः शिवाय। अभी आप इस कार्यक्रम में श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में सुन रहे थे।

श्वेत वृषभ पर विराजेला, श्वेत वस्त्रों ने धारण करणारा, महादेव जी ने आनंद अपनारा, ये तेजस्विनी महागौरी देवी हमने शुभ पदार्थो आप। महागौरी ये पार्वती देवी एम कहवाई छे के एक समय महादेव जीए पोताना आ अर्धांगना शक्तिनो परिहास विनोदमा करता काली श्यामा एम कहूं। एथी आ देवीए उग्र तपश्चर्या दिव्य आराधना करीने अति गौर श्वेत वर्ण प्राप्त कर, एथी आ महागौरी कहवाया। महागौरी पार्वती जी तथा महादेव परमेश्वर के ये वाणी अने अर्थनी माफक संयोजित छे। इमने वाणी तथा अर्थनी प्राप्ति माटे महाकवि कालिदासे करेली वंदन।

हे भवानी गौरी, स्मशाननी चितानी भस्मनु आलेपन करणार महादेव, जेरनु विष्णु भोजन करणार दिगंबर, जटाधारी कंठे नागराज वासुकीने हारना रूपमा धारण करणार, हातमा कपाल भिक्षापात्र धारणार भगवान पशुपती महादेव जगदीशनी पदवी पाम्या। हा हा हा, खरेखर ये तो हे परमेश्वरी तमारा पाणी ग्रहणनी परिपाटी योजनानु फल। हे महादेवी, आप हमारा ऊपर प्रसन्न था।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

अपने राम।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

जटायु से रावण द्वारा सीता हरण की जानकारी मिलने पर दोनों भाई ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुंचते हैं, जहां हनुमान जी से भेंट होती है। हनुमान जी दोनों भाइयों को सुग्रीव, जामवंत और समस्त वानरी सेना से मिलवाते हैं। श्री राम अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। श्री राम की शरण में आए हुए सुग्रीव अपनी वानरी सेना को माता सीता की खोज के आदेश देते हैं, परंतु सागर को लांघकर लंका जाना ये कार्य तो केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। जामवंत, अंगद और वानरी सेना हनुमान जी को जागृत करते हैं।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

रेमन, तू मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणों में मन को लगा, वही तुझे इस भवसागर से पार करेंगे।